0: सुबह अपने साथ नई उम्मीद, नया उत्साह और नए अवसर लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन नई सुबह हमें फिर से आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।

हरि ओम शरण और साथियों के गाए भक्ति गीत के बाद कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं नाथ हाजी असलम साबरी और साथियों की आवाज़ों में।

की खिदमत में पेश किया जा रहा है, उसमें हजरत समर माचवी ने अलिफ से ये तक हर हर्फ से एक मखसूस बात पैदा करके उसके ज़रिए हमें एक तालीम दी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कौन सी राह अपनानी है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। आपका हाजी असलम साबरी आपसे गुजारिश करता है कि आप इस नज़्म को बग़ौर समात फरमाएं और पूरी तख्ती का एक एक हर्फ हमें क्या सबक दे रहा है उसे सुनकर उस पर अमल करें, क्योंकि इस किस्म की नज़्म किसी ने शायद किताबों में तो पढ़ी होगी मगर ऑडियो पर पहली बार मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप खुद भी सुनें और अपने बच्चों को बड़ों को ख़ास तौर पर सुनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैज़ हासिल कर सकें। मुलाहिज़ा होगा।

हाजी असलम साबरी के गाए इस नात के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम बातें करें सब्जियों को उगाने के एक नए तकनीक के संदर्भ में। अक्सर आप खेत में सब्जियों को उगाते हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन ज़्यादा नहीं है, यानी सिर्फ धानी ज़मीन है जहां पर आप धान की खेती करते हैं, आप गमले में भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, इसका इस्तेमाल न सिर्फ किसान भाई बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी भलीभांति कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्जियों को गमलों में उगा सकते हैं। करीब करीब सभी प्रकार की सब्जियों को गमले में उगाकर बिना ज़मीन घर की सब्जी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। गृहवाटिका में अगर घर के अगल बगल ज़मीन अच्छी नहीं है या किसी वजह से वो खेती योग्य नहीं है या ज़मीन ऐसी नहीं है कि जिसमें पानी निकास की अच्छी व्यवस्था है, ऐसी परिस्थितियों में आप गमले में सब्जी उगाकर उसका उपयोग अपने इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, गमले में सब्जी लगाने के लिए सबसे पहले गमले के सही आकार का चुनाव करना चाहिए। गमले मिट्टी, प्लास्टिक

0: या लकड़ी के तख्ते के हो सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार और उपलब्धता के अनुसार गमलों का प्रयोग कर सकते हैं। 30 घन सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा इतना ही ऊंचा गमले का जो आकार होता है वो लगभग हर तरह की सब्जी उगाने के लिए पर्याप्त होता है। सब्जी के बीज या पौधे लगाने से पूर्व ये देख लें कि गमले की तली में एक छिद्र बना है या नहीं। अगर गमले की तली में छिद्र नहीं बना है तो तली के बगल में करीब आधा सेंटीमीटर गोलाई में एक छेद बना दें। उसको या तो जालीदार नायलॉन के कपड़े से या फिर कंकड़ रखकर बंद कर दें। ये छेद आप इसलिए बनाते हैं ताकि सिंचाई करते समय जो अतिरिक्त पानी है वो गमले से बाहर चला जाए और मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना रहने पाए। गमले के नीचे जो छिद्र है उसको बंद करने के बाद गमले को बलुई मिट्टी 2 भाग तथा सड़ी गोबर या पत्ती की खाद का 1 भाग मिलाकर अच्छी प्रकार से भर लें और ऊपर से करीब 1 इंच छोड़ दें, जिससे कि पानी सोखने में आसानी होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से बारीक करके उससे कंकड़ पत्थर वगैरह निकाल देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जो खाद है वो भी मिट्टी में मिला देनी चाहिए। खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें और ये काम आपको बीज की रोपाई या पौधे की रोपाई से पहले करना है। हो सके तो मिट्टी में दीमक व अन्य कीड़ों से बचाव के लिए 2 ग्राम फ्यूरोडान या तथा उसके साथ ही 2 ग्राम थैराम या कैप्टान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे में कुछ बीमारियों और रोगों से नियंत्रण हो सकता है। पौधों की अच्छी देखरेख के लिए गमले से खरपतवारों को बराबर मिट्टी की खुदाई करके निकालते रहें, जिससे जड़ों को हवा भी मिलती रहेगी। इस प्रकार से गमले में आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी, भिंडी, लोबिया तथा किसी भी सब्जी की अच्छी खेती कर सकते हैं। पौधे की बढ़वार के लिए जब भी पत्तियां थोड़ी पीली दिखाई देने लगें तो तुरंत यूरिया या किसी नाइट्रोजन वाले उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गमलों में पौधों का भली भांति विकास हो सके। गमले में उर्वरक कई बार में देना चाहिए। एक बार में अधिक मात्रा देने से पानी के साथ ये बहकर बाहर चली जाती है और पौधों को ये नहीं मिल पाती। अगर पौधे ज़्यादा बड़े हो गए हों तो गमले में डंडी लगाकर पौधों को सहारा देना चाहिए, जिससे कि ये पौधे गिरे नहीं और उनकी बढ़ोतरी ठीक प्रकार से होती रहे। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप गमले में भी सब्जियों की खेती कर लाभान्वित हो सकते हैं और अपने परिवार के लिए सब्जियां उगा सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान

0: 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। जलयान सिंधु नानकोरी होते हुए कैम्बलबे की यात्रा पर मंगलवार 26 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 28 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलबे से छूटकर नानकोरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे के बजाय आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान कल शाम 6 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और

0: विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। MV कमोटा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। MV हडपे स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल दोपहर 1 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। MV कमोटा स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान परसों शनिवार 23 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जिंदगी में अगर गाने दिल को सुकून देते हैं तो चाय सीधे आत्मा तक पहुंचती है। जी हां दोस्तों, आज बातें चाय की। दोस्तों, सुकून क्या होता है? सुबह की ठंडी हवा, हल्की बारिश और हाथ में एक गर्म चाय की प्याली, और अगर साथ में कोई अपना बैठा हो और कोई चाय पिलाने वाला हो तो चाय सिर्फ चाय नहीं रहती, याद बन जाती है।

दोस्तों जब कोई घर आए और मम्मी बोले बेटा अच्छी वाली चाय बनाना, तभी समझ जाना तुम्हारी नहीं तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा शुरू हो चुकी है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि शादी के आधे रिश्ते कुंडली से नहीं चाय की एक प्याली से तय होती है।

दोस्तों, चाय की दो घूंट पीते ही दिलो दिमाग ताज़ा हो जाती है, थकान भी दूर हो जाती है और साथ ही चेहरे पर खुद ब खुद खुशी भी आ जाती है।

0: दोस्तों, अक्सर चाय की आखिरी चुस्की बता देती है कि छोटी छोटी खुशियां ही सबसे खास होती है, और चाय की तरह हमारी जिंदगी भी है, जिसे धीरे धीरे घूंट लो तभी मजा आता है ना दोस्तों। इंद्रधनुष कार्यक्रम का आज का ये सफर शबाना के साथ बस इतना ही, होगी फिर मुलाकात, दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से कार्यक्रम। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की 245वीं कड़ी।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

अभी आप रामचरितमानस गान की 245वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं चंद देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप चंद देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी दी जाती है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर आज भारी वर्षा होगी, जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है। साथ ही द्वीपों के एक या दो भागों पर गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं भी चलेंगी। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

बजकर 30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर गुड मॉर्निंग अंडमान में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर लालजी सिंह से ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा। साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे तलत अजीज, रूप कुमार राठौर और चंदन दास। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9:00 तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1289वीं कड़ी। बिखरेगा पुराने फिल्मी गीतों का जादू 11:30 पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। दोपहर 12:00 तेलुगु में सुनिए सुपरहिट गीत। मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गीत 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में बेला सावेर को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे कचाल और कमोटा द्वीप के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पुराने गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 4:30 पर। 4:40 पर बताया जाएगा कार्यक्रमों का विवरण। बाहरों की शाम कार्यक्रम का समय रहेगा 4:45। शाम 5:00 तमिल में होगा कृषि कार्यक्रम। बांग्ला में 5:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम चिरोंतनी। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में नॉर्थ वंडूर के SHG से जुड़ी महिला श्रीमती माधवी विश्वास के साथ बातचीत की जाएगी। राजेश कुमार निराश द्वारा लिखित नाटक एक टुकड़ा सच आप सुन सकेंगे 6:30 पर। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि 10:00 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमम् अन्तिमम् च चरणम् सफलतया सम्पाद्य इटलीदेशात् नवदिल्लीम् प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरम् जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच

0: भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण 24 परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 5 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 4:55 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर लालजी सिंह से ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा। साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे तलत असीज, रूप कुमार राठौर और चंदन दास। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। तत्पश्चात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। SMS माय चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1289वीं कड़ी। बिखरेगा पुराने फिल्मी गीतों का जादू दिन के 11:30 पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में सुनिए सुपर हिट की, तत्पश्चात 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गीत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीपों के उपराज्यपाल ने आबकारी विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा कर पर्यटन जरूरतों के अनुरूप नीति बनाने के निर्देश दिए। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय कल से हर शुक्रवार और शनिवार को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कल सचिवालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई और प्रशासनिक कारणों के चलते जहाज़ों के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने आबकारी विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा की। ये प्रस्तुति आबकारी नीति में प्रस्तावित संशोधनों और अनिटको द्वारा प्रीमियम शराब की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने से संबंधित थी। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि संशोधित नीति पारदर्शी, सभी को समान अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित होना चाहिए कि द्वीप समूह में पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकताएं

जरूरी हों। इस अवसर पर मुख्य सचिव और अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय एवं प्रशासन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से कल से 13 जून तक हर शुक्रवार और शनिवार को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और पर्यटन पहल के रूप में परिकल्पित सिनेमा का उत्सव मनाना, साथ ही द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करना है। फेस्टिवल के पहले सप्ताह में प्रशंसित और पुरस्कार विजेता फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें निर्माता कुंदन शाह द्वारा निर्देशित जाने भी दो यारों कल शाम 6 बजे और 23 मई को दिन में 11 बजे सलाम बॉम्बे फिल्म शामिल है। इसी दिन दूसरे शो में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR की स्क्रीनिंग शाम 5 बजे की जाएगी। फिल्म महोत्सव के दौरान विभाग द्वारा फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले एक विशेष लघु फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशाला निशुल्क होगी। कार्यशालाओं और शेष फिल्म स्क्रीनिंग का कार्यक्रम जल्द ही दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी फिल्म स्क्रीनिंग और कार्यशालाओं के लिए पंजीकरण गूगल फॉर्म और QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। इसे निदेशालय के आधिकारिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया हैंडल के जरिए प्रसारित किया जाएगा। निदेशालय ने छात्रों, स्थानीय फिल्म निर्माताओं, फोटोग्राफरों, ड्रोन ऑपरेटरों, ट्रेवल्स ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, थिएटर समूहों, फिल्म क्लबों, पर्यटकों और आम जनता को फिल्म महोत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे महोत्सव और इससे जुड़े कार्यशाला सत्रों के दौरान भारतीय सिनेमा की समृद्धि और विविधता का अनुभव कर सकें। द्वीप समूह में 28 मई को ईद उल अदा का त्यौहार मनाया जाएगा। आसमान में चांद दिखाई देने के कारण हिलाल समिति ने ये जानकारी दी है। पुलिस विभाग द्वारा कोस्ट गार्ड, मत्स्य विभाग, वन विभाग और सागर मित्रों के समन्वय से फिशरमैन वॉच ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य तटीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मछुआरा समुदाय के साथ समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना था। इस दौरान मछुआरों को मछली पकड़ने वाली छोटी नावों के उचित पंजीकरण और दस्तावेजीकरण के महत्व के बारे में जागरूक, समुद्र में जाने से पहले अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा उपकरण रखने, साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तटीय सुरक्षा की टोल फ्री नंबरों का उपयोग करने की सलाह दी गई। पुलिस विभाग ने मछुआरा समुदाय की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के माध्यम से तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राजभाषा नीति और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कल सचिवालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव राजभाषा ऋचा ने की। बैठक के दौरान सचिवालय और प्रशासन के विभिन्न विभागों में राजभाषा हिंदी के उपयोग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। सचिव ने विभिन्न विभागों और सचिवालय के सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजभाषा नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कर सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग के संबंध में उपराज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करें। सचिव ने सभी नोडल अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वे अपने अपने कार्यालयों के कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली को सक्षम करें, ताकि ई ऑफिस में हिंदी में कार्य आसानी से किया जा सके। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सावधानी पूर्वक और समय पर तैयार करके प्रस्तुत करें, नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करें और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करें। उप सचिव राजभाषा राजेंद्र इंदवार ने सचिवालय और विभिन्न विभागों में हिंदी में किए गए सरकारी कामकाज पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस बैठक में सचिवालय के सभी उप सचिव और सहायक सचिव और विभागों के सहायक निदेशक उपस्थित थे। प्रशासनिक कारणों के चलते

ते जहाज़ों की यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर 21 मई को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और 22 मई को शाम 6 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए वापसी करेगा। उधर एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान के लिए 22 मई को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 23 मई को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से वापसी यात्रा करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशासन के सहयोग और भारतीय रोइंग महासंघ तथा अंडमान निकोबार रोइंग संघ के समन्वय से कल कोस्टल रोइंग राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का उद्घाटन किया। कार्बाइन्स कोव तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में खेल और शिक्षा निदेशक आदित्य संगोत्रा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता विकसित करने के महत्व पर जोर दिया और एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्पण और अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर साई के केंद्र प्रभारी मोहम्मद सादिक ने कोस्टल रोइंग राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के महत्व के बारे में

को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से वापसी यात्रा करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशासन के सहयोग और भारतीय रोइंग महासंघ तथा अंडमान निकोबार रोइंग संघ के समन्वय से कल कोस्टल रोइंग राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का उद्घाटन किया। कार्बाइन्स कोव तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में खेल और शिक्षा निदेशक आदित्य संगोत्रा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता विकसित करने के महत्व पर जोर दिया और एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्पण और अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर साई के केंद्र प्रभारी मोहम्मद सादिक ने कोस्टल रोइंग राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये द्वीप समूह में आयोजित होने वाला अब तक का पहला कोस्टल रोइंग राष्ट्रीय कोचिंग शिविर है। इस पहल का उद्देश्य कोस्टल रोइंग में भारत के प्रदर्शन को मजबूत करना और एथलीटों को एक अद्वितीय समुद्री वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करना है। द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर 26 मई तक तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 मई तक समुद्र में ना जाएं। विशेष दिव्यांगजनों के लिए कल आयुष अस्पताल में UDID योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सत्र के दौरान आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी ने आयुष अस्पताल में हर बुधवार को आयोजित होने वाले विशेष ऑटिज्म क्लिनिक के बारे में बताया। उन्होंने समग्र क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दिव्यांगजनों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाले शिविरों के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगता प्रमाणन, पंजीकरण और सरकारी कल्याण योजनाओं से संबंधित उनके प्रश्नों और शंकाओं का समाधान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल ने आबकारी विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा कर पर्यटन जरूरतों के अनुरूप नीति बनाने के निर्देश दिए। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय कल से हर शुक्रवार और शनिवार को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कल सचिवालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई और प्रशासनिक कारणों के चलते जहाज़ों के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम देश रागिनी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम देश रागिनी में। दोस्तों, जब बात हो देश के सम्मान, मेहनत और जुनून की, तो हमारा दिल अपने आप गर्व से भर जाता है। हमारा देश भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों, संघर्ष और जीत की कहानी का संगम है। जब भी हमारे देश का तिरंगा लहराता है आसमां में, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमारा मन कह उठता है, सलाम इंडिया।

दोस्तों, हमारे देश की शान एवं सुरक्षा में अनगिनत लोगों का संघर्ष एवं त्याग शामिल है। हमारे ये देशभक्त अपने परिवार, अपने सपनों, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं होती, बल्कि कभी-कभी चुपचाप आंसुओं को छुपाकर भी वतन की सेवा की जाती है।

दोस्तों, मिट्टी की खुशबू, तिरंगे की शान और अपने देश के लिए दिल में बसा प्यार, इन भावनाओं को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। फिर भी दिल से बस यही बात निकलती है

दोस्तों, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारे दिल की धड़कन हमेशा हमारे वतन के लिए ही धड़कती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से अब चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को किसी न किसी विशेष गुण के साथ इस दुनिया में भेजा है। मुश्किलें और परेशानियां जीवन की परीक्षा होती है, जो हमें मजबूत और समझदार बनाती है। अगर रास्ते कठिन लगे तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। इस सुविचार के बाद आइए अब सुनते हैं पर्यावरण कार्यक्रम।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अपर निदेशक एवं वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह को। डॉक्टर लालजी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद मैडम आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम में।
1: और श्रोताओं, इनसे हमारी बातचीत का विषय है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो आप बताएं संक्षेप में कि जैव विविधता क्या है।
2: आज का विषय जो आपने चुना है, अगर इस विषय को हम देखें तो संतुलित एवं संरक्षित पर्यावरण के संदर्भ में, तो यह विषय

0: आपने जो चयन किया है ये बहुत ही सारगर्भित है और जनमानस केंद्रित है। अगर हम जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन को देखें तो ये दोनों ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इन्हें हम ओवरलुक नहीं कर सकते। जहाँ पर हम पाते हैं कि जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन ये दोनों काज एंड इफेक्ट के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अगर हम अपने पूरे संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमारी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन हमें एक काज और इफेक्ट के रूप में प्रतिबिंबित होता है। आपने प्रश्न किया जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता को बहुत ही सरल रूप में अगर हम परिभाषित करें तो जैव और विविधता, जैव मीन्स लाइफ और विविधता जहाँ विविध रूप हों, दैट मीन्स डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ द लाइफ, जिसमें आज हम फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करते हैं तीन कैटेगरी में। तो इन तीनों का जो संयुक्त रूप है, जो संगठित स्वरूप है, वो संगठित स्वरूप ही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है।
1: आपने बात की जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, सरल शब्दों में बताएं क्या संबंध है इनका।
0: जैव विविधता जब पृथ्वी पर इवॉल्व हुआ, जिसे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं, उसके साथ ही साथ डाइवर्स इकोसिस्टम भी हमारे अर्थ पर इवॉल्व हुआ। अब अगर हम इकोसिस्टम के इंटायर कंपोनेंट की बात करें तो हम पाते हैं कि वहाँ दो प्रकार के कंपोनेंट उपस्थित हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन दो कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से ही हमारा इकोसिस्टम बनता है और इन इंटरेक्शंस का रिजल्ट ही हमारी प्राकृतिक धरोहर जैव विविधता है। और इस जैव विविधता के कारण ही हमारा क्लाइमेटिक चेंज में परिवर्तन जो भी दिखता है वो सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत बात करें तो इसमें तीन चेन आती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स, और ये तीनों को मिला लीजिए तो यही बायोडाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। प्रोड्यूसर में हमारा वनस्पतियाँ, वन, ग्रीन प्लांट्स, ये जितने सभी पादप हैं ये प्रोड्यूसर्स में आते हैं। कंज्यूमर्स में हम मानव एवं अन्य जंतु आते हैं। डीकम्पोजर्स में, जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि तीन मिला के फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैव विविधता को संरचित करता है, इनकी जो संरचना हुई ये तीनों से हुई और वो डीकम्पोजर ही इन तीनों एलिमेंट्स को डीकम्पोज करके पुनः नेचर में मिलाता है, यानी रिसाइकलिंग होती है। अगर हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स को संयुक्त रूप से देखें तो यही हमारा बायोडाइवर्सिटी का स्वरूप है। और इनका कोई भी अवांछनीय परिवर्तन होता है इनके प्राकृतिक स्वरूप में, तो यह परिवर्तन ही हमें निगेटिव क्लाइमेट चेंज की ओर अग्रसित करता है या प्रोत्साहित करता है। अब इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट पे हमने आपको ब्रीफ किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर, लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट का जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो है क्लाइमेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसमें लाइट, विंड, वाटर इत्यादि ये सभी कंपोनेंट आते हैं। और अगर इनके हम प्राकृतिक स्वरूप को छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा होने वाला जो परिवर्तन है क्लाइमेट में सतत चल रहा है सिंस द डेट ऑफ द इवोल्यूशन, वो निगेटिव चला जाएगा, हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट अवस्था में अगर हम देखें अर्थ पर, तो जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये जितने भी हैं। अगर इनमें अनवांटेड एबनॉर्मल चेंजेज होता है तो हमारा बायोडाइवर्सिटी सीधे प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन की अगर हम वर्तमान में देखें तो ये बहुत ही आजकल बर्निंग टॉपिक है कि वी आर फेसिंग विथ ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ये सभी जितने भी निगेटिव क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट हैं, इससे हमारी जैव विविधता

0: केवल अंडर थ्रेट ही नहीं है बल्कि एक्सटिंक्शन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। और जब तक हम बायोडायवर्सिटी को संरक्षित अवस्था में नहीं रखेंगे, तब तक हमारे सामने निगेटिव क्लाइमेट चेंज एक विकराल रूप धारण करके आता रहेगा और स्थिति वहाँ भी पहुँच सकती है कि जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त भी हो सकता है।
1: यानी कि जैव विविधता जो है हमारे जीवन के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो एक आम आदमी किस तरह से अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाए या उनकी दिनचर्या क्या रहे?
0: इस तथ्य को मैं बहुत ही सरल रूप में समझाना चाहूँगा जो सर्वविदित है। अगर हम पृथ्वी पर वन आच्छादित भूभागों का सर्वे करें या देखें, तो हम पाएंगे कि उन भूभागों में तापक्रम की जो स्थिति है, इन कंपैरिजन टू जहाँ पे वन कम आच्छादित हैं, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है। लेकिन जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हमें उतना इंक्रीज नहीं मिलता जो अदर भूभागों में मिलता है, जिसके वजह से केवल भारत ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर त्राहिमाम मचती है। दूसरा पहलू, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम वर्षा के स्तर को देखें, तो हमारे देश ही नहीं संपूर्ण भूभाग को अगर सर्वे किया जाए, तो हम यही पाते हैं कि वर्षा की दर उन भागों में बहुत ही अच्छी है जहाँ वनस्पतियाँ या वन आच्छादित भूभाग हैं। तो पहली विषय तो यह है कि जो हम मानव उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमें उस ओर सोचना होगा कि हमारी बायोडायवर्सिटी कैसे संरक्षित रहे। और ये बायोडायवर्सिटी जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगी, जितना डाइवर्सिफाइड होगी, उतना ही हमारा क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव होगा। ये एक बहुत ही साक्षात प्रमाण है आज के युग में कि जब हम जंगल के भीतर होते हैं, वनों के अंदर होते हैं, तो हमें बहुत ही प्लीजेंट टेम्परेचर मिलता है। लेकिन जैसे ही हम वन से बाहर आते हैं, तो हमें वो प्लीजेंट टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। और जो बाहर वृक्षों की संख्या कम है, या हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, इसके लिए उत्तरदायी केवल समस्त जनमानस है।
1: यानी वनों की कटाई,
0: वनों की
1: कटाई
0: कटाई
1: एक बहुत बड़ी समस्या
0: या
1: है जैव विविधता के लिए। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ये बताएं कि जैव विविधता को और किससे खतरा है?
0: देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, मतलब जितनी भी अनवांटेड हमारे बिहेवियर हैं जो उनके नेचुरल स्टेटस को डिस्टर्ब करते हैं। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण बताया। इस तरह से हम कुछ भी अपने जीवन से संबंधित चीजें हैं जो हर एक जनमानस को आत्मसात करना चाहिए कि अगर हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ की कोई भी प्राकृतिक संपदा का अगर अपने दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, तो उसे हमें कैसे करना चाहिए जिससे उसकी प्राकृतिक अवस्था डिस्टर्ब न हो और संतुलित न हो। ये तो क्लाइमेट चेंज की ही बात है। हम ये भी भूल जाते हैं कि ये हमारी बायोडायवर्सिटी हमारे लिए फूड, मेडिसिंस एंड ड्रग्स का मुख्य नेचुरल रिसोर्स है, जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कह लीजिए, हम उससे जुड़े हुए हैं। ये तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम नेचुरल ब्यूटी की बात करें, तो जहाँ वन आच्छादित पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अच्छे गार्डन होते हैं, अच्छी छाया होती है, वो सभी हमें एक नेचुरल ब्यूटी प्रदान करने के साथ साथ एक प्लीजेंट एस्थेटिक प्लेजर देते हैं। और जो एस्थेटिक प्लेजर हमें मिलता है, वो शायद किसी आर्टिफिशियल सिस्टम से नहीं मिलेगा। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि यह अफॉर्चुनेट है कि हम मानव या जन समुदाय प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं और डे बाई डे हमारी बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन करती जा रही है।
1: अंत में आप सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक जनमानस की एक मोरल ड्यूटी बनती है कि जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की कटु सत्यता को स्वीकार करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि हम एक पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज के प्रति एक कड़ी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, तभी ये संभव हो पाएगा कि इस पृथ्वी पर एक संरक्षित एवं सुरक्षित जीवन स्थापित हो पाएगा।
1: कहने का

0: है कि जैव विविधता के संरक्षण से ही जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हम अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकते हैं।
1: हाँ, उसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। अगर इस
0: जी
1: अर्थ को हम लिविंग प्लेनेट कहते हैं, यहाँ पे जीव समुदाय, फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी रहते हैं, तो बिना इनके सामंजस्य के क्लाइमेट एक बैलेंस अवस्था में, संतुलित अवस्था में स्थापित हो ही नहीं सकता है।
0: तो डॉक्टर लालजी सिंह, आज आप आए हमारे कार्यक्रम में और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। हम समझते हैं कि वो आपकी इन बातों पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अभी आप डॉक्टर लालजी सिंह से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। विषय था जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा। भेंटकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि यानी 21 मई सन 2026। आज का ये दिन हमारे देश भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। आज का ये दिन हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। आतंकवाद केवल हिंसा ही नहीं बल्कि मानवता पर सबसे बड़ा हमला है। ये नफरत, डर और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा देश भारत हमेशा प्रेम, भाईचारे और एकता की ताकत से इसका सामना करता आया है।

0: कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाज़ों में ये गीत था दिल जले फिल्म से बोल जावेद अख्तर के, धुन बनाई थी अनु मलिक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गीत उद्भव और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई जतिन ललित ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आवाज़ें थी उदित नारायण और साथियों की, गीत रचना आनंद बख्शी की। इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की

0: घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल लगभग 2000

0: 200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा

0: तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र

0: बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर

ये गज़ल थी चंदन दास की गाई हुई और अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं गज़ल रूप कुमार राठौर की आवाज़ में।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप तलत अजीज, रूप कुमार राठौर और चंदन दास की गाई चंद गजलों का लुत्फ ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दो रास्ते फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था रोटी फिल्म से। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा स्वर दिया किशोर कुमार ने। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort and fuel efficiency. With 6 airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
2: Get attractive offers up to Rs. 45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom. TNC apply.
3: Namaste Kavita. Achha laga ki aap Ayushman Arogya Mandir mein cervical cancer ki jaanch ke liye aayi.
4: Are didi, meri beti ne mujhe protsahit kiya.
3: Aapki beti to bahut samajhdar hai. Beta, tum kitne saal ki ho?
4: Main 14 saal ki hoon.
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
5: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
6: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.

आरडी बर्मन और साथियों की आवाजों में अब प्रस्तुत है जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

आर डी बर्मन और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था जमाने को दिखाना है फिल्म से। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए 1940

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन सुनवा रहे हैं। इनके साथ वॉयलिन पर एस आर भास्करन ने, मृदंगम पर पालघाट रघु ने, गंजीरा पर बी नागराजन ने और घटम पर टी एच सुभाष ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए यू श्रीनिवास का मैंडोलिन पर बजाया राग अभेरी।

दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम एसएमएस माय चॉइस।

SMS My Choice कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके SMS कीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लेते हैं प्रोग्राम का पहला SMS, जिसे भेजा है डॉलीगंज से रमेश और श्वेता ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं शिकारी फिल्म का ये गीत कुमार सानू की आवाज में। धुन बनाई आदेश श्रीवास्तव ने।

कलिकट से लक्ष्मी और प्रिया की पसंद पर आइए अब सुनते हैं गॉड तुसी ग्रेट हो फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल की। जलीश शेरवानी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत था हमारा दिल आपके पास है फिल्म से। आवाज़ें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत को पसंद किया था रंगत से सुप्रिया ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से। स्वर दिया कुणाल कांजावाला ने, गीत रचना इरशाद कामिल की। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता थे छोलदारी से गौरव और रवि।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में ये गीत है दिल परदेसी हो गया फिल्म से, सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता हैं डिगलीपुर से आशा और निकिता।

आनंद बख्शी का लिखा एवं उत्तम सिंह का संगीत पद किया हुआ ये गीत है दिल तो पागल है फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथी। इस गीत को पसंद किया प्रेम नगर से संगीता और सबीता ने।

हटबे से अजीत की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

कोई आपसा। अब सुनिए इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को पसंद किया लॉन्ग आइलैंड से पारितोष गुप्ता ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बम्बू फ्लैट से शाजिया और अमायरा की पसंद पर ये गीत था फना फिल्म से। आवाज़ें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की, पारसून जोशी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और अब कार्यक्रम में सुनिए जन्नत 2 फिल्म का ये गीत।

ग्यारह चरमा से तरन्नुम शादाब और नाजिया की पसंद पर यह गीत था, जन्नत टू फिल्म से। स्वर दिया मोहित चौहान ने, बोल संजय मासूम के, धुन बनाई प्रीतम ने। इस गीत के साथ ही एसएमएस माय चॉइस कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1289वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें।
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ

0: शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षावन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी
1: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी,

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: आहा, सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी।

0: वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे? मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
2: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ

0: ओनो वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
1: अरे वाह अटकू मटकू।
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
3: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
4: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1289वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों के पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए पहला गीत फिल्म कैदी से। इस फिल्म के गायक कलाकार है आशा भोसले और किशोर कुमार। गीतकार है इंदवर और संगीतकार है बप्पी लहरी।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक राज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, रचनाकार है मजरू और संगीत दिया है चित्र गुप्ता ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में तैयार कहीं और चल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और रचना हसरत जयपुरी की है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में आइए सुनते हैं बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया, रचना इंद्र की और फिल्म का नाम है कैदी।

हमशक्ल फिल्म का ये गीत, आवाज़ें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने और रचना आनंद बख्शी की है।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया, रचना अनजान की और फिल्म का नाम है हेरा फेरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हैवान से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, रचना प्रदीप रॉय चौधरी की और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है अब समाचारों का प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने यह बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में बेला सावेर और हुसैन बख्श की आवाज़ में कुछ गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला व्हाट्सएप हमें आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इस्टार और नरगिस खातून का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत।

अगला व्हाट्सएप हमें आया है मेरठ कैंट से। दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई का।

अगला गीत कसूर फिल्म से। गीत सुनने की ख्वाहिश हमारे श्रोता हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा।

सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान, कल्पित और बेबी गर्विका हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मिस्टर एक्स इन इंडिया फिल्म का ये गीत।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Munterbeck's Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर

0: आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
1: ये विडम्बना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने यह बात कही।
3: India has recently launched।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
4: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस

0: पार्टी के दो सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में चार महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री
5: ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में चार महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार तट और उसके आसपास

ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में 4:00 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4:00 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम में आज आपको सुनवाया गया फिल्म शिवाय, एक्शन रिप्ले हीरोपंती, रुस्तम, खट्टा मीठा, सूरज पे मंगल भारी, रॉय, रब ने बना दी जोड़ी, साजन, एक पहली लीला, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ओके जानू के गीत। इसी के साथ ही नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: Non-stop music.

आप सुन रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है जिसमें हर दिन एक नई कहानी छुपी होती है। कभी ये हमें हंसाती है तो कभी कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देती है। हर पल को जीना ही असली जीना है, क्योंकि यही छोटे छोटे लम्हे ज़िंदगी बन जाते हैं।

दोस्तों, हार कभी हमें छोटा नहीं बनाती, बल्कि हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। कभी ये हमें गिराकर सिखाती है, तो कभी उठकर फिर से चलना सिखा देती है। असल मायने में वही जीतता है जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ता। तो चलिए इसी हौसले के साथ सुनते हैं एक जोश भरा गीत।

दोस्तों, ख्वाब वो होते हैं जो हमें हकीकत से आगे देखने की हिम्मत देते हैं। ये आँखों में बसते हैं और दिल में पलते हैं। कभी मुस्कुराने की वजह बनते हैं तो कभी आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। तो चलिए इन हसीन

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: Sinlaman na inye rokar hamang ingiri taka lamak ta elni medium wave 438.6 meter x 684 kilohertz ramang elni Akash Vani Isri Vijayapuram anye Nikobari program tahang.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
1: मिन कहतलोन ही इंग हराब

एमवी कालीगढ़ चिलिटल नमान तकार निकुबार इंग तंगामु सकाम इप्तमाचु तरकन रो दहाद मिन नलक्ञ हेडवाफ ngā छावन इप्तनर नायनेट अलांगो चिंगेत इत तफोल कन रो दलाहराप नरांग का निकुबार सेक्लेटिल नमान अनमिन अल्तालगर नहावान नचु श्री विजयपुरम किरण गरन मिन हेक नमचो एमवी कालीघाट नचु लिटिल नमान कानिकुबार चावरा तरसा कचान ननकवरी त कैम्बल बे इप्तनरनाय सात अलाहो चिंगेत इत सात कंड्रो तपुह नलग्ञ हेडवाफ ngā छावन इतलुअनाय अलाहो चिंगेत इतलुअनाय हंगमेट नहेवर कंड्रो तलाहतम नरांग कैम्बल बे सक ननकवरी कचाल तरसा चावरा कानिकुबार तलिटिल नमान अनमिन अल्तालकर नहावान नचु श्री विजयपुरम असुन गरन रनमिन गमचोंग एम वी सेंटिनल नरन गरन भारत सीमा नंग चुहलिटिल नमान इप्तहुरेज सकाम इतमाचु तरकन रो धातम नलक्ञ हेडवाफ ngā छावन इप्त नरनाय लुई अलाहो चिंगेत इत हेवर कन रो तपुह नरांग लिटिल नमान नचु श्री विजयपुरम ये पैसेंजर्स त इन व तनुप टिकेट गम चोंग एम वी भारत सीमा नमिहो नयोक लन एलगो चोंग एम वी सेंटिनल ngati anurej ngamchung mv north passage anununne min katulun hi ing harap hai tehangi tersin hek tangi program

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में ये वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ

नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं, जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। यह रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े, तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे, उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो, उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे, तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में कृषि संबंधित कार्यक्रम होगा वेलन उलगम। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम चिरंतनी। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में HSD से जुड़ी महिला श्रीमती माधवी विश्वास से की गई बातचीत आप सुनेंगे। 6:30 पर आप राजेश कुमार निराश का लिखा नाटक सुनेंगे एक टुकड़ा सच। मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युववाणी के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात सुनिए गौरवगान। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे नींबू वर्गीय पौधों में मुख्य पोषक तत्व के बारे में सुबह 5:00 बजकर

55 मिनट पर। 6:10 पर जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा इंसान शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे 6:15 पर। छः बजकर 30 मिनट पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे। वतन के गीत का समय रहेगा 6:40। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप विविध भारती मुंबई केंद्र से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप मुकेश को सुनेंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुनिए सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम में सूचनाओं के अलावा आप कुछ लोकगीत का आनंद लेंगे। दोपहर 12 बजे सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। एक बजकर 10 मिनट पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे मास्टर हबीब कव्वाल निजामी और बशीर अहमद। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुनेंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें एक ही श्रोता के पसंद पर आधारित कार्यक्रम रसिगार तेनिगम और विकसित भारत शिक्षा अधिकार पर चर्चा आप सुनेंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर कुछ नजरुल गीत पेश किए जाएंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत में BK नंदा के साथ की गई बातचीत आप सुनेंगे, विषय होगा अच्छे उत्पादन के लिए जल संरक्षण। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंगिणी का समय रहेगा 6:30। अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं, अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म काला बाजार से। नितिन मुकेश की आवाज है, जिसकी गीत रचना की है इंदिवर ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं समीर की गीत रचना, जिसे गाया है नितिन मुकेश और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है बलमा।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में किशन कन्हैया फिल्म का ये गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அபதம். வணக்கம் நேர்களே.

0: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को शांता का
1: और रागिनी का
0: नमस्कार। रागिनी, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम आज के खूबसूरत विचार से करें।
1: हाँ शांता, खूबसूरत विचार है, जीवन के हर मोड़ पर सच्चा साथी वह होता है जो हमें बिना शर्त समझे और प्रेरित करे। हमारा मन और आत्मा ही हमारे सबसे बड़े साथी है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। जब कोई नहीं होता तब भी हमारा आत्मविश्वास और हमारी सोच हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। यह साथी हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। सच्चा साथी हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है, चाहे वह हमारी अंतरात्मा हो या कोई प्रिय व्यक्ति। यह साथी हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकारने और उन्हें दूर करने की ताकत देता है। सच्चे साथी की पहचान मुश्किल समय में होती है, क्योंकि वही हमें थामे रखते हैं और गिरने से बचाते हैं। उनका साथ जीवन की असली पूंजी है।
0: बहुत ही खूबसूरत विचार रागिनी। सच्चा साथी कौन होता है ये दुख में पता चलता है, सुख में तो सब साथ रहते हैं, लेकिन इस विचार को सुनकर हमारे किसान साथी समझ गए होंगे कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रागिनी, इस विचार को हम यहीं विराम देते हैं और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, मछली पालन तालाबों में प्राकृतिक खाद के रूप में लगभग कितनी मात्रा में गोबर का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये हमारे किसान साथियों को बताना है। प्रश्न एक बार फिर दोहरा दो।
1: हाँ शांता, प्रश्न है, मछली पालन तालाबों में प्राकृतिक खाद के रूप में लगभग कितनी मात्रा में गोबर का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हम कार्यक्रम के अंत में देंगे।
0: साथियों, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आइए अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर नागेश राम से, जिनके साथ आज बातचीत का विषय है मछली बीज उत्पादन कुछ सुझाव।
4: लीजिए सुनिए किसान साथियों ये बातचीत।
5: नागेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक मछली पालन का सवाल है, तो किसान भाई हमारे इन द्वीपों में करते हैं, मीठे पानी की मछली पालते हैं
6: जी।
5: तो इसमें जो मछली बीज उत्पादन का जहाँ तक सवाल है, तो इसका क्या महत्व है, कितना अहमियत है ये?
6: देखिए, मत्स्य पालन जो है आज के दिनों में हमारे देश में एक मत्स्य उद्योग का रूप ले चुका है
5: जी।
6: और ये पूरा मत्स्य पालन जो है, इसका बैकबोन जो है मछली बीज ही है।
5: अच्छा।
6: अगर फार्मर्स के पास में मछली बीज ना हो तो वो मछली पालन नहीं कर सकते। तो इस मछली बीज को उत्पादन करने के लिए हम तीन भारतीय मेजर कार्प जो कहते हैं उनका बीज उत्पादन करते हैं। ये बीज आपको प्राकृतिक स्रोतों से भी मिलते हैं, नहर वगैरह से। अगर हम प्राकृतिक स्रोतों की तरफ जाएं तो ये बीज से हम मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा नहीं दे सकते।
5: अच्छा, क्योंकि वो बहुत कम मिलेगा।
6: और मिलेगा भी तो मिक्स टाइप का मिलेगा, सभी अच्छा। प्रजाति की मछली मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्प्रेरित प्रजनन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जो जिस मछली का ज्यादा डिमांड है, जो ज्यादा बढ़ती है, उस मछली को सिलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, उसमें से हम बीज उत्पन्न करते हैं। और ये बीज जो है एकदम शुद्ध और स्वस्थ बीज होगा। जिस मछली का बीज का जरूरत है वही मछली के बीज हम बना सकते हैं और किसान भाई को पालन करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि बीज की जो मांग है इतनी ज्यादा है कि हम जो एक सीजन में बीज उत्पादन करते थे उसमें इसका पूर्ति होना मुश्किल हो गया हमारे देश में।
5: अच्छा।
6: इसके लिए अभी बहु प्रजनन प्रणाली का जो विस्तार किया गया है, इसमें हम एक ही मौसम में एक ही मछली से दो या तीन बार बीज उत्पादन कर सकते हैं।
5: अच्छा।
6: इसमें से बीज उत्पादन के लिए लागत भी कम आएगी और अच्छे से अच्छा बीज उत्पन्न करके
5: संख्या में बीज भी मिलेगा,
6: दे सकते हैं फार्मर्स।
5: अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि अगर हम कृत्रिम तरीके से, या जैसे आपने कहा कि इंजेक्शन वगैरह देकर बीज उत्पादन करें, तो अधिक संख्या में मिलेगी, शुद्ध मिलेगी और इससे मछली पालन को बढ़ावा भी मिलेगा, किसानों को फायदा भी होगा। अब जहां तक मछली बीज उत्पादन का सवाल है, तो इसमें मछलियों का चयन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
6: देखिए, मैंने बताया कि आमतौर पर जो है भारतीय कार्प मछलियां जो दो वर्ष की आयु में मैच्योर हो जाती है, इन मछलियों को ही हम दो साल या उसके ज्यादा के उम्र के मछलियों को प्रजनन के लिए चुनते हैं। और इन मछलियों को जो वजन है 1 से 3 किलोग्राम के बीच में होने से इसको पकड़ने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए बहुत सुविधा होती है। और इसमें जो है जो अंडे देती है मछली, उसका भी कम नुकसान होता है।
5: अच्छा।
6: अच्छे से अंडा भी मिल जाता है और मछली भी स्वस्थ रहती है।
5: अच्छा। यानी कम से कम 2 साल आयु की होनी चाहिए और स्वस्थ मछली होनी चाहिए, तो ऐसी मछलियों को चुनना चाहिए। और प्रजनन के लिए मौसम कैसा होना चाहिए?
6: देखिए, मैंने तो बताया कि हमारे द्वीप समूह में हम मई से लेकर के जुलाई तक का जो है बीज उत्पादन करते हैं मछलियों से। बहु प्रजनन प्रणाली में हम 3 बार भी एक मछली से करते हैं। लेकिन ये जो समय है, मौसम है, वर्षा के दिनों में बहुत अच्छा होता है। इसमें टेम्परेचर वगैरह जो ब्रीडिंग के लिए जरूरत है वो सही तरीके से मिल जाता है।
5: अच्छा।
6: और मई से लेकर के हम ये जुलाई या अगस्त तक इसका ब्रीडिंग कर सकते हैं।
5: अच्छा। तो ये जो आपने समय बताया मई से लेकर जुलाई अगस्त तक, इस दौरान 3 बार भी कर सकते हैं क्या?
6: नहीं, इसके लिए हम 3 भागों में बांटते हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षा ऋतु और जो फेग एंड ऑफ द रेनी सीजन, ये 3 सीजन में होता है। उसके लिए अलग तरीका से हम ब्रूडर्स को तैयार करते हैं।
5: लेकिन सबसे मतलब उत्तम समय जो होता है ये अभी जो आपने बताया मई से लेकर जुलाई तक,
6: मई से लेकर अगस्त तक जो है, इसमें आसानी से हो सकता है। एक सीजन में मछलियां जो है एक ही बार ब्रीड करती है, लेकिन जो विकसित हुआ है प्रणाली उसमें से हम 3 बार भी
5: चाहे तो
6: कर सकते हैं।
5: इसके अलावा जो प्रजनन के लिए जिन मछलियों को हम चुनते हैं, जैसे आपने बताया कि किस तरह मछलियों का चुनाव करना चाहिए, तो इन मछलियों का रखरखाव भी बहुत जरूरी होगा।
6: बिल्कुल।

0: जब हम ये मछलियों को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि मछली अच्छा हेल्थी हो, सही तरीके से तैर रही हो, किसी तरह का बीमारी ना हो। इन मछलियों को हम तालाब में जो ब्रूडर टैंक्स होता है वहां से निकाल करके एक अलग तालाब में रखते हैं, जो प्रजनक मछली या ब्रूडर टैंक्स कहते हैं उसमें रखते हैं,
1: अच्छा, मतलब इनका अलग से रख रखाव करते
0: अलग
1: हैं।
0: से रख रखाव करते हैं। वहां पर मैं एक मछली के लिए 1.5 स्क्वायर मीटर से 2 स्क्वायर मीटर तक का स्पेस
1: जगह
0: का
1: रखे।
0: जरूरत पड़ता है। यहाँ पर मैं मछली आसानी से रहेगी। और इसके लिए तालाबों में जो पानी का गहराई है 2 मीटर तक या 2.5 मीटर होना जरूरी है
1: अच्छा, ब्रूडर टैंक के
0: ब्रूडर
1: लिए।
0: टैंक के लिए। और ये मछली को जो है हम जनवरी या फरवरी महीने से ही अलग कर देते हैं आम मछलियों से,
1: अच्छा
0: क्योंकि जब एक तालाब होता है उसमें कई तरह के मछलियां होंगे, छोटी बड़ी सब कुछ,
1: जी,
0: लेकिन उनके बीच में से हम ये 2 साल या उससे बड़ी मछलियों को सेलेक्ट करके अलग तालाब में रखते हैं,
1: अच्छा, ताकि उनका देखभाल मतलब अच्छा से कर
0: अच्छा से हो
1: सके।
0: सकते हैं। जब अलग में रख देते हैं हम इनको, तो वहां पर मैं इनको खाने के लिए हम कुछ प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और जो मिनरल मिक्सचर वगैरह सब होता है। इसका एक फीड बना करके
1: अच्छा
0: उसको, जो मछली होता है उसका 1 किलो मछली होने से उसका 1 से 2% बॉडी वेट के हिसाब से रोजाना उसको 2 टाइम दाना देते हैं,
1: अच्छा
0: सुबह और शाम को। इसका समय और एक जगह निश्चित होना चाहिए, वहीं पर मैं मछली आकर के भोजन खाएगी। तो इस तरह का भोजन हम जब उसको देते हैं तो वहां पर मैं हम देखते हैं ये या तो ट्रे में रख के देते हैं या कोई बैग में रख के देते हैं दाना, तो हमें मालूम हो जाता है कि मछली को कितना भोजन का जरूरत पड़ता है।
1: अच्छा
0: और ये भोजन जब मछली खाएगी, ये जो भोजन दे रहे हैं इसको पका करके दे, जैसा गाय वगैरह को दाना बना करके पका करके देते हैं, उस तरह पका करके देने से ज्यादा स्वादिष्ट भी होगा और मछली भी
1: अच्छा से
0: उस
1: खाएंगी
0: अच्छे से
1: और मतलब
0: खाएंगे।
1: स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि इनको मतलब पूरी तरह से तैयार करना जरूरी होता
0: जरूरी
1: है।
0: नहीं।
1: जी
0: और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसान भाई इन मछलियों को गुड़, मसूर की दाल वगैरह कुछ मात्रा में दे, या उर्द वगैरह उनके पास में होता है, तो उसमें से भी बहुत अच्छा ब्रूडर डेवलपमेंट होता है और ये मछली बीज उत्पादन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
1: बिल्कुल सही। और जो तालाब का जो ब्रूडर टैंक होता है उसमें पानी का परीक्षण वगैरह भी करते रहना
0: जी,
1: चाहिए।
0: समय समय पर मैं, ये तो बहुत जरूरी बात है, इसको देखनी चाहिए। अगर पानी का क्वालिटी उस क्वालिटी खराब हो जाए तो मछली उसमें मर भी सकती है। तो
1: अच्छा
0: महीने में एक आध बार जल वहां से लेकर के किसी भी नजदीक का जो फिशरीज का या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो लेबोरेटरी है वहां जाकर उसका पीएच वगैरह देख ले, हो सके तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कितना है उसका देख ले हमारे कैरी में या फिशरीज डिपार्टमेंट के पास जाकर।
1: नागेश जी, जहाँ तक मछली उत्पादन में हार्मोनल इंजेक्शन का सवाल है, आपने कहा कि
0: जी
1: इंजेक्शन देकर अंडे पैदा करते हैं,
0: जी
1: बच्चे
0: हाँ
1: निकालते हैं, तो मछलियों को कितना ये इंजेक्शन देना चाहिए, इसके लिए भी कुछ मात्रा निश्चित होगी?
0: बिल्कुल। देखिए, जब हम ब्रूडर डेवलपमेंट कर लिए, ब्रूडर मैनेजमेंट करके मई तक लेकर आए गए, उसके बाद में हमारा ये ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है
1: अच्छा
0: बीज उत्पादन के लिए, तो वहां पर मैं हम देखते हैं कि ये मछली को किस तरह का हार्मोनल इंजेक्शन दें। इसके लिए आजकल जो बाजारों में है ओवाप्रीम और ओवाटाइट, ये सिंथेटिक हार्मोन से ये अवेलेबल है। इसका दाम भी ज्यादा नहीं है, 350 रुपए से 500 रुपए के बीच में एक वायल 10 ml का मिलता है। किसान भाई इनको लेकर के जो भी ब्रूडर्स मछली है, मेल और फीमेल,
1: नर और
0: नर और
1: मादा।
0: मादा जिसे कहते हैं हम, उनको तालाब में से पकड़ लें। मादा मछली के लिए 0.3 मिलीलीटर, 0.3 मिलीलीटर से 0.5 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट, और मेल के लिए 0.2 से 0.3 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उनको देना चाहिए इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दे सकते हैं बॉडी के पास में, देखिए एक लाइन होता है लेटरल साइड में, लेटरल
1: बगल
0: लाइन
1: बगल में
0: बोलते
1: जी।
0: हैं, वहां से लेकर के वो कॉडल फिन जो है पिछला दुम का हिस्सा है उसके ऊपर में इसके इंजेक्शन हम देते हैं। ये इंजेक्शन शाम को हम करीबन 6 से 7 बजे के बीच में देते हैं। इसकी जो मात्रा है सिर्फ एक ही बार देते हैं, एक ही इंजेक्शन चाहिए। दूसरा, जो पुरानी विधि तरीके से हम करते थे कि मछलियों का जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, उसको
1: अच्छा
0: निकाल करके उसका सोल्यूशन बना करके वो हार्मोन उसको इंजेक्ट करते थे। उसमें से 2 बार इंजेक्शन देना पड़ता था मछली को,
1: तो कुछ मेहनत भी करनी
0: मेहनत
1: पड़ती
0: करना
1: थी।
0: पड़ता था और हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो जाता था, उसमें से
1: अच्छा
0: मछली को चोट लगने का संभावना ज्यादा होता था।
1: अच्छा
0: लेकिन अभी जो हार्मोनल इंजेक्शन निकला है इसमें से हैंडलिंग बहुत कम हो गया और ब्रीडिंग जो एग रिलीज है वो पूरी तरह से हो जाता है और मछली को भी ज्यादा इसमें
1: तकलीफ नहीं होती
0: तकलीफ नहीं
1: सर, मतलब
0: होता,
1: सिर्फ एक बार इंजेक्शन
0: एक ही
1: देने से
0: बार शाम
1: बस।
0: को इंजेक्शन दे। तो
1: बिल्कुल
0: इंजेक्शन देने के कम से कम 10 से 12 घंटे में मछली नेक्स्ट डे सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अंडा देना शुरू कर देती है। जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो हम एक हापा में अगर 1 kg का फीमेल मछली रखते हैं तो उसके
1: जी।
0: साथ में 2 मेल रखने चाहिए 1-1 किलो का। जब मछली अंडा देगी तो उसमें से जो नर मछली है अपना स्पर्म रिलीज करेगा, इसका जो फर्टिलाइजेशन है, एक फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो जब मछली अंडा देना शुरू करेगी उस सेम टाइम में इसका स्पर्म रिलीज होगा और एग फर्टिलाइज हो जाएगा,
1: अच्छा, अंडे का निषेचन मतलब पानी में बाहर
0: पानी में बाहर
1: होगा।
0: हो जाता है। उसके बाद में 1 घंटे से 1.5 घंटा रुकने के बाद में जो वाटर हार्डनिंग ऑफ एग्स हम लोग बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा। फिर आस्ते से मछली बाहर निकाल करके ब्रीडिंग आपा से और ये अंडे को एक प्लास्टिक बाल्टी में मग द्वारा निकाल करके रखा जा सकता है।
1: तो इसके बाद मतलब हैचिंग जो हापा है उसमें मतलब इसको ट्रांसफर भी करना
0: जी
1: पड़ेगा।
0: हाँ, जब ये अंडा बाल्टी में ले ले किसान भाई, उसके बाद में तालाब में हैचिंग हापा फिक्स करना चाहिए। उसमें एक इनर हापा और आउटर हापा होता है, हैचिंग हापा जो है उसमें, तो इनर हापा

0: में 6 से 7 लीटर अच्छे अंडा हम डालते हैं, और ये अंडा डालने के बाद में करीबन 18 घंटे, 16 से 18 घंटे तक में उसमें से स्पॉन निकल जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम क्या करते हैं कि ये इनर आपा को हटा देते हैं, क्योंकि उसमें जो गंद अंडा का जो छिलका होता है या जो खराब अंडा होता है वो उस इनर आपा में होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये जो स्पॉन है 3 दिन तक बाहरी भोजन कुछ नहीं लेता है, उसी में जो योक्सेक होता है खाता है उसी को, 72 आवर्स में उसका माउथ ओपनिंग होता है, उस समय ये खाने के लिए बाहरी भोजन का जरूरत पड़ता है, प्राकृतिक भोजन के लिए।
1: अच्छा
0: तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हम इस स्पॉन को लेकर के नर्सरी पॉन्ड में डालते
1: अच्छा
0: हैं।
1: अच्छा जो इनर हापा रहता है जिसमें अंडे को हम छोड़ते
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: तो आपने कहा कि 10 से 12 घंटे के बाद बाहर ये अंडे से निकल
0: जी,
1: जाता है, जो छोटे छोटे स्पॉन है,
0: स्पॉन है
1: तो निकल के खुद अपने बाहरी आपा में चले जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: आउटर
0: क्योंकि
1: आपा
0: इनर
1: में।
0: आपा जो होता है इसमें मच्छरदानी में जैसे छिद्र होता है, छोटा छेद होता है, उसी तरह का छेद होता है, उस छेद के द्वारा ये बाहर आउटर रेचिंग आपा में पहुंच जाते
1: और
0: हैं,
1: अंदर में सिर्फ वो जो सड़ा हुआ अंडा
0: अंडा का
1: या
0: छिलका
1: छिलका ये
0: या
1: सब रह जाता
0: वही
1: है,
0: रह जाता
1: उसको
0: है,
1: हटा देना
0: उसको हटा
1: चाहिए।
0: देते। फिर इसके बाद में क्या करना चाहिए, जब 72 आवर्स का हो जाएगा, माउथ ओपनिंग होगा, तो इन स्पॉन को लेकर के हम एक नर्सरी तालाब में डालते हैं।
1: जी
0: उस नर्सरी तालाब को भी किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, नहीं तो ये तालाब ठीक तरह से तैयार नहीं होगा तो मछली बीज का उत्पादन उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिस तरह हम धान का चारा डालते हैं क्यारी बना करके,
1: जी
0: उसी तरह का तालाब को भी अच्छी तरह सुखा दे, सुखा करके उसको फिर हल द्वारा जोत ले या पातू द्वारा खोद ले। उसके बाद में उसमें चूना डालना चाहिए, गोबर डालना चाहिए। चूना कितना डाले उसमें, 100 स्क्वायर मीटर तालाब है, उसमें से 3 से 4 किलो चूना चूना का
1: अच्छा
0: पाउडर डालना चाहिए, और कच्चा गोबर जो है 10 से 12 किलो उसमें डालना चाहिए। ये कब डालना चाहिए, जब तालाब में थोड़ा सा पानी
1: रहता
0: भर
1: है।
0: दे।
1: हाँ
0: उसके बाद में फिर इस तालाब में जो 100 स्क्वायर मीटर एरिया का तालाब है उसमें 60,000 से 1 लाख मछली का बीज
1: छोड़
0: छोड़ना
1: सकते हैं।
0: चाहिए, और इसको छोड़ने के बाद में खाने के लिए हम धान का भूसी और जो बादाम का खली है उसका महीन पाउडर बना करके डेली सुबह और शाम पहले 4 दिन 400 ग्राम देना चाहिए, दो बराबर भागों में बांट करके 5वें दिन से इस भोजन को डबल कर देना चाहिए अप टू 15 to 20 डेज। क्योंकि ये जो नर्सरी में हमारा जो मकसद है मछली बीज को फ्राई स्टेज तक लाने के लिए, ये सिर्फ 15 से 20 दिन का होता है,
1: अच्छा
0: तो इसके बाद में वो मछली बीज को उठा
1: या तो सीधे बेच
0: करके
1: सकते हैं या तो फिर अंगुली का बनाने के
0: या फिर
1: लिए,
0: अंगुली का बनाने के लिए उसको थिनिंग करना चाहिए, दूसरे
1: अच्छा
0: तालाब में और
1: बड़े
0: लाना
1: तालाब में
0: चाहिए।
1: छोड़ना चाहिए। तो नागेश जी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इंजेक्शंस देने चाहिए और फिर उनको किस प्रकार से नर्सरी तालाब में ट्रांसफ़र करके वहाँ उसकी देखभाल करनी
0: जी
1: चाहिए।
0: हाँ
1: अब चलते चलाते आपने इतनी सारी बातें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव भी दे दीजिए ताकि जो मछली बीज उत्पादन किसान भाई करें उनको सफलता ज़रूर मिले।
0: देखिए, मछली बीज उत्पादन में सबसे पहले प्रमुख बात है कि अच्छी तरह का ब्रूडर फिश होना चाहिए,
1: अच्छा
0: जो प्रजनक
1: प्रजनक,
0: मछली जिसको कहते हैं। उसके बाद में मछली बीज उत्पादन के लिए कम से कम 1 महीना पहले नर्सरी तालाब का तैयारी करना चाहिए। अगर ये तालाब सुखा नहीं सकते हैं तो वहां पर मैं जालों द्वारा छोटे छिद्र वाला जो जाल होता है उसमें से मछली जो हानिकारक कीट या निकालना चाहिए। तालाब में किसी भी तरह का खरपतवार नहीं होना चाहिए, ये जो नर्सरी तालाब है। अगर किसान भाई थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो तालाब के चारों तरफ में छोटे जो जाल होता है वो जाल लगा दे, जिससे कि सांप या मेंढक तालाब के अंदर
1: ना जा
0: ना
1: सके,
0: जा सके,
1: क्योंकि जो स्पॉन्स होते हैं बहुत छोटे होते
0: बहुत
1: हैं,
0: छोटे होते
1: देखभाल की
0: उसको
1: बहुत
0: खा
1: ज़रूरत
0: जाएंगे।
1: है। बिल्कुल
0: फिर तालाब में जो चूना मैंने बताया 2.5 किलो से 3 किलो तक डालना चाहिए, गोबर 10 से 12 किलोग्राम, ये बहुत जरूरी है, इसमें प्राकृतिक भोजन
1: उनके
0: बनता
1: लिए।
0: है। जो नर्सरी तालाब है इसमें पानी 1 मीटर गहरा होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होने से तो मछली के बीज उसमें मर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए नीचे से ऊपर तक आना आना पड़ता है इनको, और उसमें ज्यादा ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा शक्ति उसका इन्वेस्ट होगा, इसलिए तालाब का जो गहराई है पानी का 1 मीटर होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इसमें 3 तरह का मछली हम डालते हैं, कतला, रोहू, मृगल, अलग अलग एक तालाब में एक प्रजाति का डालते हैं,
1: अच्छा
0: तो इतना ठीक। फिर उसके बाद में हर रोज सुबह इनको सुबह और शाम दाना जरूर देना है, अगर एक दिन भी दाना नहीं दिया तो ये जो बीज का मास मोर्टेलिटी अधिक से
1: हो
0: अधिक
1: सकता
0: बीज मर जाएंगे,
1: है।
0: तो
1: अच्छा
0: डेली उनको भोजन देना चाहिए। और छोटे बीज जो है कभी कभी देखिए नीलकंठ वगैरह जो पक्षी होता है ये आकर भी पूरा खाते हैं उसको, बतख वगैरह तालाब में ना छोड़े, तो इनसे बचाव करना चाहिए। फिर जो मछली के बीज तालाब में हम छोड़ते हैं इसको 15 से 20 दिन के लिए ही हम नर्सरी तालाब में छोड़ते हैं, उसके बाद में पकड़ करके किसान भाई को पालन के लिए बेच सकते हैं।
1: या फिर जैसा आपने बताया, अगर उनको फिंगरलिंग
0: अंगुलिकाएं
1: बनाना है
0: बनाए तो
1: तो
0: उसमें
1: बड़े
0: उसको
1: तालाब में छोड़ना होगा।
0: छोड़ना होगा।
1: बिल्कुल सही। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि अभी आपको जितनी सारी बातें बताई गई हैं मछली बीज उत्पादन के बारे में, इस पर आप ज़रूर गौर करेंगे। आपको बताया गया है अगर आप मछली बीज उत्पादन के लिए इच्छुक हैं तो बताई गई बातों पर ध्यान रखकर मछली बीज उत्पादन करेंगे। नागेश जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: मछली बीज उत्पादन कुछ सुझाव।
3: साथियों, इस विषय पर अभी आपने विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की, बता रहे थे डॉक्टर नागेश राम। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानकारी

0: हासिल हो गई होगी।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर अब तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, गीत का आनंद तो हमने ले लिया और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, मछली पालन तालाबों में प्राकृतिक खाद के रूप में लगभग कितनी मात्रा में गोबर का प्रयोग किया जाना चाहिए। रागनी, इस प्रश्न का सही उत्तर बता दो।
1: हाँ शांता, मछली पालन तालाबों में प्राकृतिक खाद के रूप में 1 हेक्टर तालाब के लिए लगभग 10,000 किलोग्राम गोबर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
0: उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने अपने उत्तर की जांच कर लिए होंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। कल हम कृषि जगत के तहत आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए श्री राजेश कुमार निराश का लिखा नाटक एक टुकड़ा सच।

0: अरे ओ भाग्यवान, जरा बाहर तो आओ।
1: आ रही हूँ बाबा, जरा तैयार तो हो लूं।
0: अरे 2 घंटे हो गए आईने के सामने बैठी हो, ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग तुम्हें ही देखने आ रहे हैं।
1: चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मुझे न सही, मेरे बेटे को तो देखने आ रहे हैं ना।
0: अरे बेटे को देखने आ रहे हैं तो तुम क्यों 2 घंटे से आईने में अपना थोपड़ा निहार रही थी?
1: हाँ, क्यों ना निहारूं? अजी माँ बाप को देखने पर ही तो बेटे के आचरण का पता चलता है। अरे तुम आज भी यही फटा पैजामा कुर्ता? जाओ जल्दी भीतर जाओ और पिछले महीने जो नया सूट सिलवाया था ना, उसे फौरन पहन कर आओ।
0: अरे नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
1: चलो ये भी ठीक है, तभी तो लोग समझेंगे ना कि मैंने अपने पति को गुलाम बना कर रखा है।
0: तो फिर एक काम करते हैं, मेरे पास एक फटा पैजामा कुर्ता और है, उसे अनिल को भी पहना देते हैं।
1: ये क्या बेवकूफों की बात कर रहे हो?
0: अनिल की माँ ये बेवकूफी नहीं, बेवकूफ बनाने वाली बात है।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि चौरंगीलाल जी समझेंगे कि हमारा बेटा बेवकूफ है और उनकी बेटी भी उसे गुलाम बनाकर रखेगी।
1: तुम्हारी अक्कल गई है घास चरने क्या? अरे फटे कपड़ों में आदमी बेवकूफ नहीं, भिखारी लगता है, और मैं अपने बेटे को भिखारी बनाकर पेश नहीं कर सकती। अनिल बेटे जरा इधर तो आओ।
2: आया मम्मी।
1: देखो तुम अनिल को उल्टी सीधी मत सिखाना।
3: क्या बात है मम्मी?
1: बेटे वो जो तुमने नई सफारी सिलवाई थी ना, आज तो तू वही पहन। और सुन, चौरंगी लाल जी जो जो भी पूछे ना, उनका ठीक ठीक जवाब देना।
3: जी मम्मी।
0: अरे तुम सफारी और सूट में ही खोई रहोगी या कमरे की सफाई उफाई भी करोगी?

0: हो चुका है महारानी, वे लोग आते ही होंगे बस।
1: कमरे की सफाई में कौन सी देरी है जी, वो तो अब भी 2 मिनट में किए देती हूँ। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, देखो बेटे अनिल जाओ तो तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ।
2: यस मम्मी।
1: सुनो आज वो दहेज की बात पक्की कर लेना, इतने दिनों से कह रही हूँ लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है।
0: अरे नहीं भाई नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं दहेज वाई नहीं लूंगा।
1: कैसी बातें करते हो जी, हम दहेज नहीं लेंगे तो समाज में हमारा कितना अपमान होगा।
0: अरे अपमान होगा तो नाम भी तो होगा।
1: मैं नाम वाम कुछ नहीं जानती, कान खोल कर सुनो, चौरंगी लाल जी 50,000 रुपए दहेज में नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी हरगिज नहीं कराऊंगी।
0: अरे तुम औरतों के पास दिमाग नाम की चीज तो होती ही नहीं। अरे तुम समझती क्यों नहीं कि हमें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
0: अरे लड़की नौकरी जो करती है, चौरंगी लाल जी कह रहे थे 2,500 रुपए तनख्वाह मिलती है उसे।
1: क्या हर महीने 2,500?
0: हाँ।

0: है।
1: अरे नहीं भाई नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं दहेज वाइज नहीं लूंगा।
0: कैसी बातें करते हो जी, हम दहेज नहीं लेंगे तो समाज में हमारा कितना अपमान होगा।
1: अरे अपमान होगा तो नाम भी तो होगा।
0: मैं नाम वाम कुछ नहीं जानती, कान खोल कर सुनो, चौरंगी लाल जी 50,000 रुपए दहेज में नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी हरगिज नहीं कराऊंगी।
1: अरे तुम औरतों के पास दिमाग नाम की चीज तो होती ही नहीं। अरे तुम समझती क्यों नहीं कि हमें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: क्यों नहीं है?
1: अरे लड़की नौकरी जो करती है, चौरंगी लाल जी कह रहे थे 2,500 रुपए तनख्वाह मिलती है उसे।
0: क्या हर महीने 2,500?
1: हाँ।
0: लेकिन 2,500 मिलेंगे तो हर महीने खर्च भी तो हो जाएंगे, मैं तो पूरे 50,000 लूंगी।
1: अरे जानती हो 30 साल में हमारे पास कितने रुपए आएंगे?
0: कितने?
1: पूरे 9 लाख।
0: हाय 9 लाख! क्या ये 9 लाख रुपए एक साथ नहीं आ सकते?
1: अनिल की माँ कहते हैं खाना गरम गरम खाए तो मुंह जल जाता है। अरे इसलिए पूरे 9 लाख रुपए हम ही तो लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जरा होले होले, अरे जरा धीरे धीरे, किश्तों में।
0: किश्तों में?
1: हाँ, 2,500 की किश्तों में पूरे 30 साल तक, समझी।

0: नमस्कार चौरंगलाल जी।
1: नमस्कार नमस्कार।
2: आइए भाई साहब, आइए बैठिए ना।
1: धन्यवाद, हमें देर तो नहीं हुई।
2: अरे नहीं भाई साहब, आप तो कैसी बातें करते हैं। और सीमा बेटी कैसी हो?
3: जी ठीक हूँ। कामकाज कैसा चल रहा है?
4: जी ठीक चल रहा है।
3: तनख्वाह बराबर मिल रही है ना?
4: जी।
1: अरे बहन जी, अनिल दिखाई नहीं दे रहा है।
2: बस यही है जी। अनिल देखो सीमा आई है, जल्दी नीचे आओ।
5: अभी आया मम्मी।
6: हमारा अनिल बड़ा सीधा लड़का है, देखिए ना, यहाँ आने में कुछ शर्मा रहा है शायद।
2: क्या जमाना आया है, हमारे समय में ऐसे मौके पर लड़कियाँ शर्माती थी और आजकल के ये लड़के शर्माने लगे हैं।
6: लो लो अनिल आ ही गया।
7: नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी।
1: नमस्ते नमस्ते
2: नमस्ते।
1: और काम वाम कैसे चल रहा है?
7: जी ठीक चल रहा है।
4: सीमा बेटी तुम भी तो कुछ बोलो।
3: मैं क्या बोलूं?
2: अच्छा सीमा, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है?
8: अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? बताया तो था 2500।
1: अरे भाई साहब पूछने दीजिए, जो मर्जी आए पूछने दीजिए। कल को सीमा को इसी घर में तो रहना है।
6: अरे भाई साहब, तनख्वाह से हमें क्या लेना देना?
2: हाँ जी, हमें क्या लेना देना। अच्छा कहाँ नौकरी करती हो बेटी?
3: जी मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ।
2: हाँ अच्छा, कितने दिनों से नौकरी कर रही हो?
3: 4 महीने।
1: लेकिन एक बात है बहन जी, सीमा को जब भी तनख्वाह मिलती है सीधे लाकर अपनी माँ के हाथ में दे देती है।
2: हाँ अगले महीने मेरे हाथ में देना।
8: अपने सुबान पर जरा सुबान पर लगाम नहीं दे सकती। चुप।
2: भाई साहब आपको भी अगर सीमा से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
6: अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, इतनी सुंदर इतनी सुशील
2: और नौकरी करने वाली लड़की हो तो फिर पूछना क्या।
6: हाँ, अनिल आपके सामने है, अगर आप लोगों को कुछ जानना पहचानना हो तो।
2: अरे बहन जी, अनिल को हम क्या पहली बार देख रहे हैं? आज तो हम सिर्फ बात पक्की करने आए हैं।
3: तो फिर बात तो पक्की समझें।
1: बिल्कुल पक्की।
3: लेकिन शादी जरा जल्दी हो जाए तो अच्छा है।
1: बहन जी सीमा आपकी हो ही गई, जब आप चाहें तब शादी।
6: तो अगले महीने ठीक रहेगा?
3: नहीं जी, इसी महीने।
1: चलिए आपकी बात रख लेते हैं, इसी महीने पक्की।
6: तो आज से हम एक दूसरे के संधम संधि हो ही गए।

0: अजी उठिए जी, चाय तो लीजिए।
1: कितने बज गए हैं?
0: 6 बजने वाले हैं।
1: तो अभी से तुम मुझे क्यों जगा रही हो भाई?
0: आज से मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, स्कूल जाना है।
1: इतने सवेरे?
0: साहब, हमारा स्कूल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 6:30 बजे की बस से जाऊंगी, तभी तो समय पर पहुँच पाऊंगी।
1: तो तुम रोज ही इतनी सुबह चली जाया करोगी?
0: हाँ, वो तो मैं पहले भी जाती थी।
1: तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ और मुझे आराम से सोने दो। अपने ऑफिस में 9 बजे तक पहुँचने से भी कोई पूछने वाला नहीं है।
0: अच्छा जी, आप सोइए आराम से, मैं चली।
1: ओके, गुड नाइट।
0: अनिल साहब, सुबह के 6 बजे हैं, गुड मॉर्निंग बोलिए। फिर सो गए? इन्हें क्या।

0: आप अभी तक तैयार नहीं हुए?
1: क्यों, कहीं बाहर जाना है क्या?
0: भूल गए क्या? मैंने सुबह ही आपसे कहा था कि अर्चना ने आज हमें घर पर खाने के लिए बुलाया है।
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। लेकिन सीमा, तुम इतनी दूर से थक हार कर आई हो, पहले हाथ मुंह धो लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर चलते हैं।
0: देखो 7 बज चुके हैं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
1: बस मैं अभी 2 मिनट में तैयार हुआ।
0: देख रहे हो ना?
1: अरे पिछले 25 सालों से तुम्हारी सूरत ही तो देख रहा हूँ।
0: मैं अपनी सूरत की बात नहीं कर रही हूँ,
1: फिर
0: हमारी बहू की।
1: क्यों, क्या हुआ उसे?
0: जब से इस घर में आई है किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया है। सुबह चाय बनाकर चली जाती है और शाम को आते ही कभी पिक्चर देखने जाना है, कभी सहेली के घर, कभी पार्टी में, कभी जन्मदिन पर।
1: नील की माँ, अरे उनकी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ी मौज मस्ती तो कर लेने दो उन्हें। अभी घर परिवार की जिम्मेदारी का अंदाजा नहीं है उन्हें।
0: तो क्या अकेले मैं ही चूल्हे में खटती रहूं, बर्तन साफ करूं, कपड़े धोऊं, खाना पकाऊं, सारा काम मैं अकेले करती रहूंगी? और एक आप है कि कहते हैं कि मौज मस्ती कर लेने दो।
1: अरे जरा सब्र से काम लो भाई।
0: मुझसे और सब्र नहीं होता। आप अभी जाकर अनिल से कह दीजिए कि बहू को घर का आधा काम करना ही पड़ेगा।
1: ठीक है मैं अभी बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम जरा अपनी जुबान पर काबू रखना, समझी?
0: हाँ, मैं क्यों बोलूंगी आप दोनों के बीच में।

0: रोज सुबह शाम बस की घुटन से जी घबराने लगता है, और जब स्कूल पहुंचो तो पूरे 8 घंटे बच्चों के साथ दिमाग खपाना पड़ता है। अगर कहीं बस ना मिली तो और मुसीबत। अगर आप लोगों को काम करने वाली की इतनी ही आवश्यकता है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते?
1: नौकरानी को तनख्वाह कौन देगा?
0: मैं दे दूंगी, इससे माँ की मदद भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा।
1: वाह वाह, ऐसा लगता है किसी राज घराने की राजकुमारी हमारे घर आई है। सास और नौकरानी काम करे और बहुरानी महारानी बनकर मौज उड़ाए। वाह वाह,
0: आप मुझे गलत समझ रही हैं मम्मी।
1: मैं सब ठीक समझ रही हूँ। तुम भले अपने घर में लाड़ प्यार से पली होगी, लेकिन हमारे घर में रहना है तो सारा काम धंधा खुद करना होगा। पता नहीं माँ बाप ने कोई काम सिखाया भी है या नहीं। कल सुबह स्कूल जाने के पहले बर्तन मांजकर, झाड़ू लगाकर, नाश्ता तैयार करने के बाद ही तुम स्कूल जाओगी, समझी?
0: अनिल, तुम तो समझ सकते हो मेरी समस्या। मैं एक औरत हूँ अनिल, इतने सारे काम का बोझ मैं अकेले नहीं संभाल सकूंगी।
2: मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सीमा, लेकिन मम्मी डैडी को कौन समझाए? वो तो आज भी मुझे दूध पीता बच्चा ही समझते हैं। वो मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
0: लेकिन मैं क्या करूं अनिल, अगर तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूं, तभी घर के कामों में हाथ बटा सकती हूं।
2: ये क्या कह रही हो सीमा?
0: और मैं क्या कर सकती हूं? तुम्हारे मम्मी डैडी कहते हैं घर का काम जरूरी है।
2: ऐसी गलती कभी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी तुम कभी मत छोड़ना।

0: हाँ, एक काम कर सकते हैं जिससे मम्मी डैडी की बात भी रह जाएगी और हमारे घर का काम भी निबट जाएगा।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि सुबह हम दोनों जल्दी उठकर घर का सारा काम कर देंगे।
1: क्या?
0: हाँ देखो भाई, सच कहता हूँ, मुझे खाना बनाना क्या, स्टोव तक जलाना भी नहीं आता, लेकिन बर्तन मांज सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, और इसी बीच तुम चाय और नाश्ता तैयार कर लेना।
1: नहीं अनिल, ऐसा नहीं हो सकता।
0: सीमा, तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगनी हो मेरी, तो क्या तुम्हारी सुख सुविधा के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? हमें तो अभी काफी लंबा अरसा साथ साथ गुजारना है, यही तो वक्त है हमें आपस में एक दूसरे को जानने परखने का, समझने बूझने का।
1: तो क्या तुम झाड़ू लगाओगे, बर्तन मांजोगे?
0: क्यों, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
0: तो क्या मुझे अच्छा लगेगा कि तुम चक्की में गेहूं की तरह पिसती रहो और मैं दूर खड़ा देखता रहूं?
1: अनिल, घर के काम औरतों के लिए हैं।
0: और बाहर के काम मर्दों के लिए, यही कहना चाहती हो ना? लेकिन जब तुम पुरुष बनकर नौकरी कर सकती हो, तो क्यों स्त्री बनकर तुम्हारा हाथ मैं नहीं बढ़ा सकता?
1: लेकिन मम्मी डैडी क्या सोचेंगे?
0: जो भी सोचेंगे सोचने दो, हमें क्या, हमें तो बस उनका काम करना है।
1: नहीं अनिल,
0: सीमा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इन आंसुओं को मैं तुम्हारी आंखों में ही कैद करना चाहता हूँ। इसीलिए चाहता हूँ कि काम में थोड़ा सा तुम्हारा हाथ बटा दूँ, ताकि ये काम तुम्हें बोझ न लगे।
1: तुम मानोगे नहीं।
0: कभी नहीं, और कल से हमारा काम शुरू। हाँ अच्छा, अब जरा मुस्कुरा दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ।

0: हेलो, जरा रुको ना। नहीं, आज वैसे ही काफी देर हो गई है। हाँ, नई नई शादी हुई है, जाने में देर तो होगी ही।
1: सीमा मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है।
0: अच्छा, मैं आ रही हूँ। मैं आई कमी सर।
2: आओ सीमा।
0: आपने बुलाया सर?
2: हाँ सीमा, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम स्कूल देर से पहुँचती हो।
0: सर, कभी कभी पहली बस छूट जाती है तो फिर
2: लेकिन
0: दूसरी।
2: तुम्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा पहली बस से पहुंचा जाए।
0: कोशिश तो करती हूँ सर, लेकिन वो।
2: देखो सीमा, हम लोग शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाते हैं। अगर हम शिक्षक खुद ही अनुशासन का उल्लंघन करने लगे तो बच्चों में अनुशासन कैसे आएगा? यही बच्चे भविष्य के देश के निर्माता हैं। अगर अनुशासन और संस्कृति से बच्चे वंचित रह जाए तो देश की बुनियाद हिल सकती है। हमें अपना प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
0: आई एम सॉरी सर।
2: मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ सीमा। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुमने एक नए घर में कदम रखा है, घर के लोग तुम्हारे लिए नए हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट में कुछ समय तो लगेगा ही।
0: जी
2: लेकिन आइंदा से समय पर पहुंचने की कोशिश करना।
0: अवश्य सर।
2: अच्छा, अब तुम जा सकती हो।
0: धन्यवाद सर।

0: अनिल की माँ, ये आजकल अनिल को क्या हो गया है?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: यही सुबह 4 बजे उठकर बहू के साथ घर के सारे कामकाज कर रहा।
1: अरे उस कुलक्षणी ने उस पर जादू कर दिया होगा और क्या।
0: नहीं अनिल की माँ, ऐसी बात नहीं। तुम बेकार ही बहू पर इतना रोब झाड़ती हो।
1: कैसी बातें करते हैं आप।
0: मेरा मतलब था थोड़ा उसे आराम।
1: हाँ हाँ हाँ, उसे क्या बिस्तर पर सुलाने के लिए इस घर में लाई हूँ।
0: लेकिन 1-2 दिन तो उसे सुलाना ही पड़ेगा।
1: क्यों, क्या उसकी कोई लॉटरी निकल आई है?
0: अरे लॉटरी तो हमारी निकलने वाली है।
1: हाँ हाँ, आप पर भी लगता है उसने कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया जो आज उसकी तरफदारी करने लगे हो।
0: अरे नहीं भाग्यवान, जानती हो आज कौन सी तारीख है?
1: आज 30 तारीख है। क्यों, कोई खास बात है क्या?
0: जी हाँ, आज 9 लाख रुपए की पहली किस्त मिलने वाली है।
1: क्या,
0: अरे आज बहू पहली तनख्वाह लेकर आएगी।
1: कितने कितने?
0: पूरे 2,500।
1: पूरे 2,500?
0: हाँ देखना, आज पूरी तनख्वाह मेरे हाथ।

0: में रखेगी।
1: नहीं जी, बहू तो मेरी है, आपको क्यों, मुझे देगी पैसे।
0: मुझे देगी, मुझे देगी।
1: नहीं मुझे देगी।
0: नहीं मुझे देगी।
1: नहीं मुझे।
0: हो, अरे ये मुझे मुझे की रट छोड़ो, रुपए किसी के भी हाथ में मिले कल घर के ही तो काम आएंगे ना।
1: हाँ हाँ आप भी ठीक कहते हैं, लेकिन देखना तनख्वाह तो मेरे हाथ में रखेगी।
0: अच्छा बाबा, तुम्हारे ही हाथ में रखेगी तनख्वाह, बस मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, समझी।
1: हाँ जी, देखो जी, ये जो खर्च तो तुम्हारे और अनिल की तनख्वाह से तो चल जाएगा। अब ऐसा करना कि उन पैसों को सीधे बैंक में रख देना, जरूरत पड़ने पर काम ही आएंगे।
0: जैसी तुम्हारी इच्छा, अरे हम तो तुम्हारे सेवक हैं, जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। लेकिन एक बात है, आज बहू को डांटना फटकारना नहीं।
1: मैं कहाँ डांटती हूँ जी, वो तो कभी कभी मुंह से तीखी बात निकल ही जाती है।
0: लेकिन आज उसकी अच्छी तरह स्वागत करना।
1: वो कैसे?
0: अरे तुम अभी जाकर हलवा और पूरी बना लेना, जैसे ही बहू आएगी उसके सामने रख देना। अरे वो भी सोचेगी कि सास बहू का कितना ख्याल रखती है।
1: तो ठीक है, मैं अब भी जाती हूँ रसोई में और 2 मिनट में हलवा पूरी तैयार कर लाती हूँ।
0: अनिल की माँ, ओ अनिल की माँ,
1: क्या है? मैं तो बहू के लिए हलवा बना रही हूँ।
0: अरे जरा जल्दी करो, बहू आने वाली है।
1: बस बस तैयार हो गया है।
0: और सुनो, जरा मुझे चखने को दे, देखो तो कैसा बना है।
1: ये लीजिए।
0: वाह वाह वाह, आहा, अरे बड़ा ही स्वादिष्ट है, लेकिन शक्कर कुछ कम है।
1: कोई बात नहीं, अभी मिला देती हूँ शक्कर, बहू को अच्छा लगना चाहिए।
0: अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा।
1: अरे हाँ, वो अनिल भी तो आ गया है ना, उसे भी बुला लेना।
0: अच्छा।
1: कौन है? मैं हूँ सीमा।
0: अरे अरे जल्दी कर, हलवा जल्दी परोस।
1: थोड़ा ठहरिए जी, अभी तो गरम गरम है।
0: ए तू जल्दी भीतर जा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे आओ आओ बेटी आओ, आज देर हो गई तुम्हें।
2: हाँ वो बस छूट गई थी।
0: अरे आज तो तुम बहुत थकी हुई भी लग रही हो, आओ आओ, आओ यहाँ सोफे पर बैठ जाओ ना। अनिल की माँ, अनिल की माँ, अरे बहू आई है, कुछ चाय वाय लेकर आओ भाई।
2: नहीं पिताजी, इसकी क्या जरूरत है?
0: अरे जरूरत है, बहुत जरूरत है बेटी। अनिल बेटे, अनिल बेटे, जरा यहाँ तो आओ।
3: आया डैडी।
0: बेटी बेटी वो
2: क्या
0: वो,
2: बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं पिताजी?
0: हाँ हाँ हाँ बेटी, वो आज 30 तारीख है ना
2: जी,
0: तो तुम्हें तनख्वाह मिल गई होगी
2: जी? मिली तो थी।
0: थी मतलब?
2: पिताजी बात ऐसी है कि मेरी शादी के वक्त मेरी मम्मी डैडी ने पड़ोस के सेठ जी से कुछ रुपये उधार लिए थे, तो 1,500 रुपये उन्हीं को दे आई हूँ और बाकी के पैसों से अपने लिए साड़ी और अनिल के लिए सूट लाई हूँ।
1: क्या? हाय हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई।
4: अरे मम्मी को क्या हो गया?
0: अरे कुछ नहीं बेटे, जरा सा सर चकरा गया, अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी।
2: अच्छा पिताजी, मैं कमरे में जाती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी, चलो अनिल।
1: कान खोल कर सुन लो जी, अगर इसे इस घर में रहना है तो इस घर के सारे काम काज इसे करने होंगे और सारी की सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रखनी होगी।
4: काम तो हम करते ही हैं।
1: तू चुप रह, इस चंडाल ने तुम पर भी जादू कर दिया है, तभी तो सवेरे 4 बजे तुम चूल्हा चौकी करते हो और महारानी जी सोती रहती हैं। मुझे सब मालूम है।
4: लेकिन इस पर इतनी ज्यादती क्यों कर रही हो?
1: अरे बड़ी शान दिखाते थे इसके घर वाले की 2,500 रुपए तनख्वाह लाती है मेरी बेटी, और यहाँ तो एक कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। लगता है इसके माँ बाप ने ही छीन लिए होंगे रुपए।
2: आप लोग मेरे माँ बाप को गाली क्यों दे रहे हैं?
1: मैं गाली दूंगी और जरूर दूंगी, क्या जिंदगी भर इसी तरह इठलाती रहेगी?
0: ओहो, अब बस भी करो अनिल की माँ।
1: तुम बाप बेटे ने ही इसे सिर पर बैठा रखा है।
2: तो इसका मतलब है आपको मेरी तनख्वाह प्यारी है?
1: और नहीं तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए अपने बेटे की शादी कराई थी तुमसे?

0: सुन रहे हो ना अनिल, तुम्हारे माँ बाप ने सौदा किया है मेरा। मेरे डैडी सोचते थे बिना दहेज मांगे ये लोग शादी के लिए तैयार कैसे हो गए। अब समझ में आई बात। अनिल, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती और बेहतर होगा तुम ही मेरे साथ चलो।
1: और क्या करेगी तू, मायके ही तो जाएगी ना, उसी का तुझे बड़ा घमंड है।
0: मैं इतनी बुजदिल नहीं हूँ शायद। आप भूल रही हैं, मैं एक नौकरी पेशा आधुनिक लड़की हूँ। मुझ में अकेले ही अपनी मेहनत पर जीने का साहस है। कहीं भी किराए का मकान लेकर आराम से रह सकती हूँ। इतनी बुजदिल नहीं हूँ कि अपने माँ बाप का द्वार खटखटाकर उनका सर नीचा करूँ। चलो अनिल,
1: तुमको जाना है तो दफा हो जा। अनिल नहीं जाएगा, समझी?
2: मैं सीमा के साथ ही जाऊंगा माँ। आप लोगों को बहू नहीं, 2500 रुपये महीना चाहिए और मुझे लालची लोग नहीं, साथ निभाने वाली पत्नी चाहिए। आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। चलो सीमा।
1: ये सिर पर हाथ धरे क्यों बैठे हो जी?
3: तो और क्या करूं, डुगडुगी बचाऊं नाचूं? अरे सारे मोहल्ले वाले हम पर थूक रहे हैं।
1: मैंने क्या किया जी? रानी साहिबा को मुफ्त में खिलाने का ठेका ले रखा है क्या?
3: खिलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है भाग्यवान, खिलाना पड़ता है। वो नौकरी वाली बहू है।
1: क्या खाक नौकरी वाली बहू है, एक कौड़ी भी नहीं दी।
3: अरे थोड़ा सबर तो करना था अनिल की माँ, एक महीने ना सही, अरे अगले महीने तो मिल ही जाता 2500 का चेक।
1: तो क्या पूरे 9 लाख रुपए अब कभी नहीं मिलेंगे? हाय, हम तो लुट गए।
3: अरे 9 लाख के साथ बेटा भी गया और उसकी तनख्वाह भी गई। हाय हाय रे, हम तो लुट गए।

अभी आप राजेश कुमार निराश का लिखा नाटक एक टुकड़ा सच सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वर में गौरव गान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे। सात बजकर 20 मिनट पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार।

चित्रपट संगीत, फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए, संदेशे आते हैं। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम, और अब कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। कल सुबह 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा इंसान शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे सुबह 6:15 पर। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे।

दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सवेरे 10 बजे। एक बजकर 10 मिनट पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे मास्टर हबीब कव्वाल निजामी और बशीर अहमद।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति बनी। शिक्षा मंत्री ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 12 जनजातीय समूह नई दिल्ली रवाना हुए। और लाइन सुरक्षा और रखरखाव कार्य के लिए 23 मई को कुछ फीडरों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। भारत और इटली के व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक बताया जो यूरोप, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है और व्यापार, निवेश तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को

दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। श्री प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचनाओं पर तेजी से अंकुश लगाया जा सके और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और बिजली आपूर्ति बाधित। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 24 मई को नई दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति सांस्कृतिक समागम 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर के 500 से अधिक जनजातीय समुदायों के लगभग 1.5 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अंडमान निकोबार समूह से भी छोटा नागपुरी मूल के 12 जनजातीय समूहों के 133 प्रतिभागी समागम में भाग लेंगे। वनवासी कल्याण आश्रम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रांत प्रचार प्रमुख राम कुमार सिंह ने बताया कि यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए विद्युत लाइनों की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य के लिए 23 मई को कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के अनुसार वृक्षाबाद, चिड़िया टापू तथा कलिकट फीडर को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक लाइन सफाई कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। उपभोक्ताओं को किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-1111 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत मिशन शक्ति महिला सहायता दूरभाष सेवा हेतु वीआईपी रोड स्थित महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष में संविदा आधार पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कॉल परिचालक के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ साथ बहुउद्देशीय कर्मचारी तथा सुरक्षा प्रहरी के 2-2 पद भी भरे जाएंगे। सेवानिवृत्त सैन्य अथवा अर्धसैनिक कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 19 जून शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र गोलघर स्थित समाज कल्याण निदेशालय में जमा कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय द्वारा 26 से 30 मई तक तथा 9 जून से 12 जून तक 2 चरणों में ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। यह आयोजन विशेष रूप से 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों अर्थात कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन की आदत विकसित करना, कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा साहित्यिक एवं रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव में कहानी

0: वाचन, चित्रकला, पुस्तक खोज प्रतियोगिता, पुस्तक अभिनय प्रतियोगिता, वर्तनी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी तथा कविता प्रतियोगिता जैसी अनेक रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम बच्चों को रचनात्मकता विकसित करने, संप्रेषण कौशल सुधारने तथा मनोरंजक शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। इच्छुक प्रतिभागी राज्य पुस्तकालय में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7501-496-353 पर संपर्क किया जा सकता है। जीबी पंत अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेयरी फार्म निवासी 46 वर्षीय शंकर दास का 2 मई को निधन हो गया था। मृतक का शव वर्तमान में जीबी पंत अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अब तक मृतक के किसी परिजन अथवा परिचित द्वारा शव का दावा नहीं किया गया है। प्रशासन ने आम जनता, गैर सरकारी संगठनों तथा मृतक के परिजनों से आगे आकर शव प्राप्त करने की अपील की है। सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर यदि कोई परिजन अथवा संबंधित व्यक्ति शव लेने के लिए आगे नहीं आता है तो अस्पताल के चिकित्सा अधिक नियमानुसार शव के मामले में अंतिम कार्रवाई करेंगे। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर श्रीविजयपुरम स्थित गांधी भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति बनी। शिक्षा मंत्री ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 12 जनजातीय समूह नई दिल्ली रवाना हुए। और लाइन सुरक्षा और रखरखाव कार्य के लिए 23 मई को कुछ फीडरों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 मई तक समुद्र में ना जाएं। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV बाराटंग माय बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल 22 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान परसों 23 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर MV सेंटिनल कल 22 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन 23 तारीख को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। सिंधु जलयान नानकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर मंगलवार 26 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 28 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल 22 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा कल ही सवेरे 8:45

स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। और एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। वापसी अगले दिन 23 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा।

जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 0319223210, 0319223077 और 0319223400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में पहले सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू के स्वरों में दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

और अब अंत में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है विजू शाह ने। गायक कलाकार है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं युवा दोस्तों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। कोई अपने सपनों के लिए लड़ रहा है तो कोई अपनों के लिए। इसलिए कभी भी किसी को उसकी मुस्कान देखकर कमजोर मत समझो, क्योंकि कई लोग अपने दर्द को छुपाकर भी दुनिया के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। असली ताकत वही होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 मई को विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने, शांति और मानवता के मूल्य को मजबूत करने तथा हिंसा के विरुद्ध समाज को जागरूक करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आतंकवाद केवल बम और बंदूक की आवाज़ नहीं है, बल्कि यह मानवता, भाईचारे और विकास पर सीधा प्रहार है। आतंकवाद समाज में भय, असुरक्षा और अशांति का वातावरण पैदा करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता पर संकट आया है, तब तब एकता और साहस ने हर चुनौती का सामना किया है। और आवश्यकता है कि हम सभी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर शांति और राष्ट्र एकता को मजबूत करें। दोस्तों, आतंकवाद किसी धर्म, जाति, भाषा या देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका कोई मानवीय चेहरा नहीं होता। जहां आतंकवाद होता है, वहां केवल विनाश, पीड़ा और भय का वातावरण पैदा होता है। भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता आया है। देश की सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा एजेंसियां निरंतर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही है। हमारे वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज आवश्यकता है कि हर नागरिक राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे और देश की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाए।

0: दोस्तों आज गुरुवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों आज का युग एक नए दौर से गुजर रहा है। यह परिवर्तन केवल तकनीक, अर्थव्यवस्था या राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सोच और संरचना में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस बदलते भारत की सबसे सशक्त और प्रेरणादायक पहचान है आत्मनिर्भर नारी, वह नारी जो अपने निर्णय स्वयं लेती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और अपने परिश्रम तथा आत्मविश्वास के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है। दोस्तों भारतीय इतिहास में नारी का स्थान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में विदुषी, गार्गी और मैत्रेय जैसी महिलाओं ने ज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू जैसी वीरांगनाओं ने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इन महान महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों वर्तमान समय में आत्मनिर्भर नारी की छवि और भी सशक्त होकर उभरी है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, कला और व्यवसायों जैसी हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। पीवी सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को गौरवान्वित किया और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में भारत की पहचान बनाई। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब अवसर और समर्थन मिलता है तो भारतीय नारी किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। जी दोस्तों, आइए इसी संदर्भ में कुछ और बातें जानते हैं रूपक आत्मनिर्भर नारी बदलते भारत की पहचान के माध्यम से।

जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब शायद प्रकृति ने सबसे पहले जिस शक्ति को जन्म दिया होगा वह नारी रही होगी, क्योंकि नारी ही सृजन का प्रथम स्रोत है। संसार की हर धड़कन में, हर रिश्ते की मिठास में, हर घर की गर्माहट में और हर समाज की संरचना में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य है। वह केवल एक जैविक अस्तित्व नहीं बल्कि जीवन की संवेदना है। माँ के रूप में वह प्रथम गुरु है जिसकी गोद में संसार का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। बहन के रूप में वह विश्वास का आधार है। पत्नी के रूप में वह जीवन पथ की सहयात्री है और बेटी के रूप में वह भविष्य की आशा है। यदि जीवन एक वृक्ष है तो नारी उसकी जड़ है जो दिखाई नहीं देती परंतु उसी से पूरा वृक्ष पोषित होता है।

समाज के विकास की कहानियाँ स्त्रियों के त्याग, धैर्य और संघर्ष से ही पूर्ण होती है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पाएंगे कि हर युग में महिलाओं ने सीमाओं को तोड़ा है। कभी उन्हें सामाजिक बंधनों ने रोका, कभी रूढ़ियों ने, तो कभी संसाधनों की कमी ने। फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा, आत्मबल और साहस से हर दीवार को पार किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा का स्मरण है जिसमें स्त्रियों ने समान अधिकार, शिक्षा, सम्मान और अवसर के लिए संघर्ष किया। यह दिन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि यदि स्त्री न हो तो सभ्यता का अस्तित्व ही अधूरा रह जाएगा।

नारी केवल घर की परिधि तक सीमित नहीं रही, उसने युद्ध भूमि में तलवार उठाई, विद्यालय में ज्ञान की ज्योति जलाई, प्रयोगशाला में खोज की, खेल के मैदान पर परचम लहराया और अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वह संवेदना की शक्ति का अद्भुत संगम है। इसी संदर्भ में भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फूले का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय वीरता दिखाई। झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों से सीधे युद्ध किया, घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाई और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। उनका साहस भारतीय नारी के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। दूसरी ओर सावित्रीबाई फूले ने स्त्री शिक्षा की क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। समाज की कटु आलोचना, अपमान और पत्थरबाजी सहने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा का दीप बुझने नहीं दिया। वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत थी।

राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में सरोजनी नायडू और महादेवी वर्मा का योगदान अनुपम है। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, एक प्रखर कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थीं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर समन्वय मिलता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ थीं। उनकी रचनाएं स्त्री की आत्मा की गहराइयों को स्पर्श करती हैं। वे केवल कवयित्री ही नहीं बल्कि शिक्षाविद और समाज सेविका भी थीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वावलंबन के लिए सतत प्रयास किए।

संगीत और सिनेमा की दुनिया में लता मंगेशकर और मधुबाला ने भारतीय कला को अमरता प्रदान की। लता मंगेशकर की आवाज़ में ऐसी दिव्यता थी कि उनके गीत पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में गूंजते रहे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों गीत को अपनी स्वर साधना में अमर बना दिया। वहीं मधुबाला हिंदी सिनेमा की अनुपम अदाकारा थी। उनकी फिल्म मुगले आजम आज भी सिनेमा का शिखर मानी जाती है। मधुबाला ने कम उम्र में ही अभिनय की ऊंचाइयां छू ली और अपनी मुस्कान और अभिनय से दर्शकों के हृदय में स्थायी स्थान बना लिया।

साहसिक खेलों और एथलेटिक्स में बचेंद्री पाल और पीटी उषा ने भारतीय नारी की शक्ति को सिद्ध किया। बचेंद्री पाल सन 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कठिन परिस्थितियों और जोखिमों के बावजूद उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता प्राप्त की। पीटी उषा, जिन्हें उड़ान परी कहा जाता है, उन्होंने एशियाई खेलों में अनेक स्वर्ण पदक जीते और भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान दी। उनकी गति और समर्पण ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया।

विज्ञान और साहस की दुनिया में कल्पना चावला और नीरजा भनौत की गाथा अमर है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर भारत का गौरव बढ़ाया। वे स्पेस शटल कोलंबिया मिशन की सदस्य थीं और उनका जीवन विज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। नीरजा भनौत ने 1986 में विमान अपहरण के दौरान यात्रियों की जान बचाते हुए वीरगति पाई। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनका साहस मानवता के प्रति समर्पण की मिसाल है।

प्रशासन और सैन्य नेतृत्व में किरण बेदी और सोफिया कुरैशी ने नई राह बनाई। किरण बेदी

भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उन्होंने तिहाड़ जेल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कर्नल सोफिया कुरेशी भारतीय सेना में उच्च पद पर आसीन होकर महिला नेतृत्व का उदाहरण बनी और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

गणित और विमानन के क्षेत्र में शकुंतला देवी और दूर्बा बनर्जी अग्रणी रहीं। शकुंतला देवी ने जटिल गणनाएं पल भर में सुलझाकर विश्व को चकित किया और मानव कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुई। और वहीं दूर्बा बनर्जी भारत की पहली वाणिज्यिक पायलट बनी और पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध की।

खेल और वैश्विक मंच पर सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर भारतीय टेनिस को नई ऊंचाई दी। हरनास कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतकर आत्मविश्वास और सौंदर्य की वैश्विक प्रतीक बनी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैलेंटिना टेरेश्कोवा और जुन्को तोबेई ने असंभव को संभव किया। टेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी, जबकि जुन्को तोबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मैरी करी और एडा लवलेस का योगदान विश्व इतिहास में अमिट है। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की और 2 नोबल पुरस्कार प्राप्त किए, और वहीं एडा लवलेस को विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है।

मानवता और साहस की मिसाल एमिलिया एयरहार्ट और मदर टेरेसा ने पेश की। एमिलिया एयरहार्ट ने अटलांटिक महासागर को अकेले पार कर इतिहास रचा, जबकि मदर टेरेसा ने मानव सेवा को अपना जीवन समर्पित कर नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। अंततः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह सिखाता है कि नारी केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी है। जब हम महिलाओं को शिक्षा, अवसर और सम्मान देते हैं, तब हम पूरे समाज को सशक्त बनाते हैं। नारी शक्ति असीम है, वह प्रेम है, परिश्रम है, नेतृत्व है और परिवर्तन है। आइए इस दिवस पर संकल्प लें कि हम हर स्त्री को उसका अधिकार, सम्मान और समानता देंगे। यही सच्चा उत्सव है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है।

आत्मनिर्भर नारी, बदलते भारत की पहचान। दोस्तों, अभी आप ये रूपक सुन रहे थे जिसके लेखक थे दीपक कुमार सिंह और वाचक स्वर थे दीपक कुमार सिंह और पी लता राजनंदिनी।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गीत के साथ। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में तैयार हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: अब प्रस्तुत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में SH बिहारी का लिखा एवं OP नैयर का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।

अगले गीत में राहुल देव बर्मन के संगीत को शब्द दिए गीतकार आनंद बख्शी ने, स्वर दिया आशा भोसले और किशोर कुमार ने, और ये गीत है फिल्म सीता और गीता का।

0: के साथ साथ,
1: अरे रे रे।
0: घटा के संग संग,
1: संभालना।
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
1: मुझे लेके साथ चल तू।

और अब कार्यक्रम के अंत में महबूब की मेहंदी, सुनिए इस फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज FS अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए एक पद जो केवल OBC वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी फायरमैन PC FS के लिए कुल पद है 77, अनारक्षित वर्ग के लिए 41 पद, 29 पद OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर FS कुल पद है 17, अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद, 6 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद होगा। सफाई कर्मचारी FS के लिए कुल पद है 2, OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक एक पद रखा गया है। फॉलोवर कुक FS के लिए एक पद है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर दफ्तरी के लिए एक पद रिक्त है जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। इंडिया रिजर्व बटालियन IRBN अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए एक पद है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कुल पद है 29, अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 12 12 पद है। ST अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। कांस्टेबल वायरलेस के लिए कुल पद है 2 जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। नर्सिंग असिस्टेंट कांस्टेबल बार्बर कांस्टेबल सफाई कर्मचारी कांस्टेबल वाटर कैरियर इन सभी पदों के लिए एक एक पद है जो केवल अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। रिक्तियां अस्थायी है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिक

0: लोगों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में

0: तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप समवेत स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे

0: सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
1: अमेरिका एंड इंडिया,
2: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री

लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के

0: countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल तो बांदा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व तो क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल ये स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है, एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना है, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, एनडीएमए या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, ये हम कलर कोड वार्निंग देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देके उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
2: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं, हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40

0: साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है। तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें, वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है। किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत

0: है, पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं। देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे, जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हेवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उसे हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
0: हाँ,
1: को
0: अर्बन हीट आइलैंड, देखो ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहले स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान, तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का, इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली का तो हर साल

0: तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है। तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण। बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है। तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है। एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मानसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मानसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है। तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुट पार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउकास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। संदेशे आते हैं।

दिल से निकली फरमाइश जब सुरों से मिलती है, तब बनता है आपका अपना संगीत भरा सफ़र। तो चलिए निकल पड़ते हैं ऐसे ही सफ़र पर, कार्यक्रम संदेशे आते हैं के साथ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें, अपना पसंदीदा गीत को सुनने के लिए हमें भेजिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। तो श्रोताओं, पढ़ते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है असम से रोमेश पात्रो, रूनो पात्रो और लकी ने। हमारे इन दोस्तों ने पसंद किया है फिल्म सलामी का ये खूबसूरत गीत।

फिल्म सनम से सुनिए अगला गीत। जिला नादेड़ इटाला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, हमारे ये श्रोतागण सुनना चाहते हैं ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अब पेश है फिल्म मन का एक गाना। इस गीत को पसंद किया है स्कूल लाइन श्रीविजयपुरम से ममता देवी, अनीता देवी और सुनीता देवी ने।

असम से जुड़े हैं हमारे श्रोता भाईकॉन मुंडा, जिनकी पसंद है फिल्म लव का ये खूबसूरत संगीत। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म अलबेला से। इस गीत को पसंद किया है डेरी फ्रॉम श्री विजयपुरम से सुषमा, रिया, नीता और अश्मिता। तो चलिए सुनते हैं हमारे इन लिसनर्स का पसंद का ये गीत।

ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे कल तक समुद्र में ना जाएं। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:31 और 20 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की पहली तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:30 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।